0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

लेना पड़ेगा लाभार्थियों को पहचानने के लिए मीन्स टेस्ट किया जाएगा। बजट 2026-2027 की पेशकश के बाद आज राज्यसभा में बहस सत्र शुरू। प्रधान एवं वित्त मंत्री अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 को दूसरी पढ़त पर भी प्रस्तुत करेंगे। सांसद मंत्री और जूनियर मंत्री बजट में मुख्तलिफ मंत्रालयों के लिए घोषित कदमों पर सवाल करेंगे। गैर सरकारी संगठन नमूना चैरिटी ने बजट 2026-2027 में शिक्षा, सामाजिक अखंडता और पढ़ाई में मुश्किलों का सामना कर रहे या खास जरूरतें पढ़ने वाले बच्चों की मदद के लिए घोषित कदमों पर तसल्ली जताई। तंजीम के सीईओ सैमुअल कोयापेन के मुताबिक ये ऐलानात एक अहम कटिबद्धता दर्शाते हैं जो मॉरिशस की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए है। हालिया बजट में मैटरनिटी को लेकर जो बड़ी घोषणा की गई है इस पर संतुष्टि जताई जा रही है, लेकिन छोटे व मध्यम उद्योगों में राय अलग अलग है। बच्चे को जन्म देने के बाद मां को 6 महीनों का पेड लीव मिलेगा और बाकी के 6 महीने उस पर निर्भर है कि वो लेना चाहेगी या नहीं, जिसकी आधी तनख्वाह प्राप्त की जाएगी और वो भी जो मालिक पर मुनहसिर है। कंपनी मालिकों का यही फिक्र है कि किस तरह कर्मचारियों को रिप्लेस किया जाएगा और कंपनी की गतिविधियों को जारी रखा जाएगा। विदेश में ईरान और अमेरिका के बीच एक अंतिम समझौता तय करने के लिए बातचीत अभी तक जारी है। बातचीत सत्रों में संलग्न अमेरिकी राजनयिक ने इस बात की पुष्टि की है 60 दिनों में एक जंग बंदी पर रजामंदी जतानी चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल।

आम हालत मुशरस में आज रात 10 बजे तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। मस्करिंस के दक्षिण पश्चिम में एक ज़ोरदार एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में ठंड महसूस की जा रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह घने बादल होंगे और हवाई ढलानों पर हल्की बारिश होगी। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे और हवाई ढलानों पर हल्की वर्षा होगी। हवा दक्षिण की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र बहुत ही खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 4 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की दरखास्त है। मछुआरों, स्कीपरों और आम जनता से सावधानी बरतने की मांग है। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 21 से 23, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 7:45 बजे, सूर्यास्त 5:39 पर।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधा निदधे प

पदं समुहुढमस्य पांसुडे सुखाभिलाषा परिवार मोह नवं वयं कांतिमिदं वपुश्च येनार्पितं तज्जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। जागृति कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज के कार्यक्रम में हम सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुलास में आए मुक्ति विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। हम सभी जीवात्मा हैं। जीवात्मा का एक ही लक्ष्य होता है कि वह इस सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करें। ब्रह्मांड में अनंत जीवात्माएं अनंत शरीरों में विद्यमान हो रहे हैं, परंतु मुक्ति के लिए मात्र मानव शरीर ही साधन है। इसी शरीर में रहकर हम पुरुषार्थ करके इस संसार के आवागमन से छूट पाते हैं। मुक्ति क्या है? स्वामी जी उत्तर देते हैं, मुंचन्ति पृथक भवन्ति जना यस्याम सा मुक्ति ही। अर्थात जीवात्मा जब दुख से छूटकर परम सुख को प्राप्त होता है एवं ब्रह्म की व्यवस्था में रहता है, इसी का नाम मुक्ति है। और जो बंधन में होते हैं उनको ही मुक्ति प्राप्त होती है। स्वामी जी का मानना है कि जीवात्मा अविद्या के कारण बंधन में पड़ता है। अर्थात जब तक जीवात्मा अविद्या में पड़ी रहेगी तब तक वह मुक्त नहीं हो पाएगी। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 14वें मंत्र का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ऋषि लिखते हैं, विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अविद्या अर्थात कर्म उपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। कहने का भाव यही है कि विद्या से मुक्ति एवं अविद्या से बंधन की प्राप्ति होती है। उपनिषद में भी आया है, यदा पंचावतिष्ठन्ते जानानि मनसा सह बुधिश्च स विचेष्ठन्ते तामाहु परमां गतिम्। जब मन एवं पांच जान इंद्रिया विद्या आदि से शुद्ध होकर जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है तब उस आत्मा को परम गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यविद्या के साथ साथ महर्षि जी ने मुक्ति के और अन्य चार मुख्य उपाय दर्शाए हैं। वे लिखते हैं कि यदि कोई मुक्ति चाहे तो वह मिथ्याभाषण आदि पाप कर्मों से अलग रहें, क्योंकि पाप का फल दुख होता है और पुण्य का फल सुख। अतः सत्पुरुषों का संग कर धर्म एवं अधर्म जानकर जीवात्मा को पाप से दूर रहनी चाहिए। अतः छिन्ने मूले वृक्षे नश्यन्ति तथा पापे क्षिणे दुखम नश्यति। जैसे वृक्ष को जड़ से काट देने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही पाप को छोड़ने से दुख नष्ट हो जाता है। दूसरा मुक्ति का साधन स्वामी जी लिखते हैं, वैराग्य। विवेक पूर्वक सत्य को ग्रहण और असत्य को त्यागना एवं पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव से जानकर उस परमात्मा के दर्शाए हुए मार्ग पर चलना और सदैव उसकी उपासना में तत्पर होना वैराग्य होता है। तीसरा साधन है षटक संपत्ति। यहाँ छह साधनों को एक ही माना गया है।
वे 6

प्रकार के कर्म इस प्रकार हैं: शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा एवं समाधान। आत्मसंयम शम कहलाता है, अर्थात आत्मा व अंधकरण को पाप कर्मों से दूर रखना शम कहलाता है। कान, नेत्र आदि इंद्रियों को नियंत्रण में रखना अथवा जितेंद्रिय होना ही दम होता है। बुरे काम करने वाले पुरुषों से दूर होना उपरति है। निंदा, स्तुति, हानि लाभ, हर्ष, शोक आदि को त्याग कर साधना में ही सदा मग्न होना तितिक्ष कहलाता है। वेद आदि आर्ष ग्रंथों में एवं आप्त पुरुषों के वचनों पर विश्वास करना श्रद्धा है एवं समाधान अर्थात चित्त की एकाग्रता। ये छह प्रकार के कर्म मुक्ति का तीसरा साधन है। चौथा साधन है मुमुक्षुत्व, अर्थात मुक्ति के साधन और मुक्ति के अतिरिक्त दूसरे और कोई विषय में प्रीति न होना। जो पुरुष इन सब साधनों से युक्त होते हैं वही मोक्ष के अधिकारी बनते हैं, और मुक्ति के लिए एक ही जन्म पर्याप्त नहीं होता, इसकी प्राप्ति अनेक जन्मों में होता है। जन्म जन्मांतरों के तपस्या एवं साधना से ही हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। स्वामी जी मुंडोक उपनिषद का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि ही छिनद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्यः कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब जीवात्मा के अंतःकरण की अविद्या एवं अज्ञान रूपी गांठ कट जाती हैं, सब शंकाएं निर्मूल हो जाते हैं एवं सब बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, तभी उस परम देव परम ब्रह्म जो आत्मा के भीतर एवं बाहर व्याप्त हैं उसमें निवास करता है। इन सब के लिए एक ही जन्म पर्याप्त नहीं है। प्रश्न पूछा गया, मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा पृथक रहता है? तो उत्तर में स्वामी जी लिखते हैं, मुक्ति के समय जीवात्मा परमेश्वर से अलग रहता है। मुक्ति का अर्थ सांसारिक बंधनों से अलग होना है। यदि मुक्ति के बाद परमात्मा में ही निवास होना है तो वह भी एक प्रकार का बंधन ही होगा। इसीलिए स्वामी जी लिखते हैं, वह मुक्ति तो नहीं किंतु जीव का प्रलय जानना चाहिए। जब जीव परमेश्वर की आज्ञा पालन, उत्तम कर्म, सत्संग, योगाभ्यास पूर्वक सब साधना करता है वही मोक्ष को पाता है। सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परम व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापक रूप ब्रह्म में स्थित होकर उस विपश्चित अर्थात अनंत विद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है, अर्थात जिस जिस आनंद की कामना करता है उसे उस आनंद की प्राप्ति होती है। पुनः प्रश्न आया कि जीवात्मा कितने समय तक मुक्ति में रहता है? उत्तर में स्वामी जी लिखते हैं, ते ब्रह्मलोके ह परांते काले परामृतात् परि मुंचन्ति सर्वे। अर्थात मुक्त जीवात्मा पुनः शरीर को प्राप्त होता है। महाकल्प के बाद मुक्ति सुख को छोड़ जीवात्मा को पुनः संसार में आना होता है। महर्षि दयानंद जी ने बहुत ही आध्यात्म विषय को हमारे समक्ष रखे। हम इस संसार में एक लक्ष्य को लेकर आए हुए हैं, वह है मुक्ति को प्राप्त करना। वेद आदि शास्त्रों को आधार मानकर स्वामी जी ने हमें

0: शक्ति प्राप्त करने के साधन बताई। अतः हम भी इस आध्यात्म मार्ग पर चलकर सांसारिक सुख दुख आदि से मुक्त होकर के परम आनंद परम मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करें। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

0: सुबह के 6:19 हुए हैं। श्रोताओं नमस्कार, आप सबको, आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। आज सोमवार 22 जून 2026 और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है जो आप लोगों के साथ बिताने को मिल रहे हैं। सुबह का नजराना प्रोग्राम आप लोगों के नाम, जी हाँ, हर सुबह सिर्फ नई रोशनी नहीं लाती बल्कि एक नया अवसर भी ले देती है। जो व्यक्ति कल की हार को पीछे छोड़कर आज फिर से उठ खड़ा होता है वही जीवन का असली योद्धा होता है। श्रोताओं चलिए अभी के लिए हम सुनने जा रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश पर विशेष कार्यक्रम भूलिएगा नहीं। 6:30 समाचार, हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
2: ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश प्रचार मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रवि वेद प्रचारी सभा की ओर से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। आज के वक्तव्य का विषय है सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित पाखंडियों के लक्षण। पाखंड व ढोंग धर्म का हिस्सा नहीं है। पाखंड को मान्यता प्रदान करने एवं अपनी धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित करने से अंधविश्वास उत्पन्न होता है। जिस क्रिया व बात का कोई संबंध वेद सत्य तथा धर्म से न हो, जो वेद तर्क एवं आप्त पुरुषों के अनुकूल न हो, उसी को ढोंग और पाखंड कहते हैं। महर्षि दयानंद जी ने पाखंड को धार्मिकता की कमजोरी और छल कपट का माध्यम बताया। पाखंड वह व्यवहार है जो व्यक्ति के विश्वास या भावना के विपरीत होता है। पाखंड वह दिखावा है जो वास्तविकता के विपरीत हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धर्म के बारे में बहुत कुछ कहता है परंतु धर्म के सिद्धांतों के अनुसार नहीं जीता, वह पाखंडी कहलाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में पाखंडियों के संदर्भ में मनुस्मृति के प्रमाण देते हुए सबको सावधान कराया है और पाखंडियों से बचने का मार्ग बताया है। ऐसा इसलिए कि भारत देश 19वीं शताब्दी के दौरान परतंत्र हो चुका था। परतंत्रता के साथ साथ अज्ञान, अन्याय, अभाव, अंधविश्वास, अंध परंपराएं, जाति भेद, संप्रदाय भेद, मत मतांतरों में कलह, कुप्रथाएं, पाखंड की वृद्धि इत्यादि बाधक तत्व उपस्थित हो चुके थे। इससे पूरा भारत देश कमजोर हो चुका था। स्मरण रहे कि अज्ञान अथवा अविद्या अंधविश्वास को जन्म देती है। अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा देता है। पाखंड का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि एवं जनता के शोषण के लिए किया जाता है। पाखंड समाज को कमजोर एवं खोखला बना देता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के दौरान स्वामी जी के समय भी पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास, कुप्रथाएं एवं अंध परंपराएं अपनी चरम सीमा पर थी। शूद्रों पर अत्याचार, धूर्ततापूर्वक धन का हरण तथा कथित चमत्कारी बाबाओं एवं साधुओं द्वारा महिलाओं पर शोषण की बातें हमेशा से प्रकाश में आती रही। भटकती हुई जनता आडंबरों एवं धूर्तों के जाल में आसानी से फंस जाती थी। शिक्षा एवं सत्य ज्ञान के अभाव में भटका हुआ समाज पिछड़ता चला गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन सब बाधाओं को प्रत्यक्ष रूप से यत्र तत्र देखा और इन बाधाओं को हटाने के लिए एवं सामाजिक तथा धार्मिक समस्याओं को दूर

दूर करने के लिए शिक्षा का द्वार सभी के लिए खोल दिया। स्वामी जी के अनुसार उत्तम शिक्षा और सत्य ज्ञान से ही पाखंड, ढोंग, अंध परंपराएं और अंधविश्वास को हटाया जा सकता है। सत्यार प्रकाश के चौथे समुलास के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मनुस्मृति के श्लोक प्रस्तुत करते हुए पाखंडियों के संदर्भ में चर्चा की। स्वामी जी ने चतुर्थ समुलास में बिल्ली और बगुला जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति से सावधानी बरतने की शिक्षा दी है। धर्म ध्वजी सदा लुब्धश छाजिको लोकदम्भक वैडाल व्रतिज्येयो हिंस्र सर्वाभि संधक। वैडाल वृत्ति पाखंडी का पहला लक्षण है। धर्म ध्वजी, जो धर्म का कार्य कुछ भी ना करें परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे। दूसरा लक्षण है सदा लुब्धः, जो हमेशा लोभ से जुड़ा रहे, अर्थात जिसमें लोभ की प्रवृत्ति हो। तीसरा लक्षण है छाजिकः, अर्थात जो कपटी हो। वैडाल व्रति पाखंडी का चौथा लक्षण है लोकदम्भकः, अर्थात सांसारी मनुष्यों के सामने अपने बड़ाई के गपोड़े मारा करें, हर समय अपनी ही प्रशंसा करें और करवावें। पाखंडी का पांचवा लक्षण है हिंस्र, अर्थात प्राणियों का घातक करने वाला तथा अन्य से वैर बुद्धि रखने वाला। जो व्यक्ति हिंसक होकर एवं शत्रु बनकर लोग व्यवहार करता है उसे हिंस्र कहा गया है। पाखंडी का छठा लक्षण है सर्वाभिसंधकः, अच्छे बुरे दोनों से मेल रखें, अच्छे लोगों एवं बुरे लोगों से संपर्क बनाए रखें, अच्छे के साथ रह के साधु जैसा व्यवहार करें और बुरे लोगों के सान्निध्य में डाकू जैसा व्यवहार करें। उक्त छह लक्षणों को वैडाल व्रति कहा गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे बिल्ली शांत, स्थिर और मनमोहक प्रतीत होती हैं, वह आँख मूंद लेती हैं परंतु सही दाव देखकर अपने शिकार पर हिंसापूर्वक झपट पड़ती हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हैं, अपने शिकार को मारकर खा जाती हैं, ऐसी वृत्ति को वैडाल व्रतिक कहा गया है। पाखंडी के लक्षणों की व्याख्या। पाखंडी के लक्षणों को बताने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मनुस्मृति का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए वक्रव्रती लोगों से बचने का उपदेश दिया, अर्थात बगुला पक्षी जैसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति से दूर रहने का संकेत किया। कहते हैं कि प्रथम है अधो दृष्टि, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बगुले के समान दृष्टि नीचे रखने वाला पाखंड कहलाता है। जो कीर्ति पाने के लिए एवं अपने ध्येय व स्वार्थ की पूर्ति के लिए बगुले पक्षी के समान अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता से देखता है, ऐसे पाखंडी से सावधान बरतना चाहिए। दूसरा है नैष्कृतिकः, ईर्ष्या करने वाला, हिंसा तथा ईर्ष्या से बर्ताव करने वाला, जैसे कि किसी ने किसी का थोड़ा सा अपराध किया तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहे। स्वार्थ साधन तत्परः, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने में हमेशा लगा रहता है, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए छल कपट, अधर्म या विश्वासघात करने से भी नहीं हिचकता है, अपना काम निकालने में अत्यधिक चतुर होता है, ऐसे व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। षठः, षठः ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात झूठी होने पर भी अपने जिद, अपने हठ कभी नहीं छोड़ता, अपने गलत या झूठी बातों को सही साबित करने के लिए अड़ा रहता है। हठ करने वाले ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। मिथ्या विनीतः, झूठा दिखावा करने वाला व्यक्ति, बाहरी व्यवहार में सीधा साधा या साधु जैसा दिखता है लेकिन अंदर से दुष्ट होता है, शैतान होता है। चरित्रवान, संतोषी और सज्जन होने का ढंग रचता है, बगुले के समान वह कपटी है और उसे पाखंड कहा गया है। महर्षि दयानंद जी ने ऐसे लक्षणों
वाले

0: अखंडी लोगों से हमेशा दूर और सावधान रहने के लिए उपदेश दिया है। पाखंडियों के जाल में फंस जाने से अनेक प्रकार के कष्टों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति वेद से एवं सच्चाई से नाता जोड़ लेता है, वह अंधविश्वास के दलदल में नहीं फंसता है। आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है। अब आचार्य सुनील को अनुमति दीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार और आदाब, सुबह 6:30 है। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पेंशन प्रणाली में नए सुधार को लागू करने के लिए योग्यता का जायजा लिया जाएगा, एक मींस टेस्ट किया जाएगा। बजट 2026-2027 पर आज से बहस सत्र शुरू, राष्ट्रीय सभा में प्रधान एवं वित्त मंत्री अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 को दूसरी पढ़त पर भी प्रस्तुत करेंगे। मैटरनिटी लीव को एक साल तक बढ़ाने पर जहां खुशी और राहत है, वहीं उद्योगों पर बड़ा दबाव होने का फिक्र है। एसएमई चैंबर का मानना है कि ये कदम घोषित करने से पहले उद्योगों से सलाह मशवरा करना चाहिए था। और अमेरिका तथा ईरान के दरमियान जंगबंदी पर बातचीत, समझौते की कुछ शर्तों पर स्पष्टीकरण पाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार आदाब, अरब खबरें तफसील से। पेंशन प्रणाली में सुधार लाया जा रहा है, माहिरों के आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर रखा गया। अब बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू होगा। वृद्ध पेंशन के लिए जो लोग योग्य होंगे उन्हें 60 साल से 70 साल के बीच पेंशन पाने का फैसला लेना होगा। लाभार्थियों को पहचानने के लिए एक मींस टेस्ट किया जाएगा। राजमिला असिता मुनी की रिपोर्ट पर अशिता रघो का विवरण पेश है।
2: 1 जनवरी 2027 से रिटायरमेंट पेंशन प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू किया जाएगा। इसके तहत मौजूदा लाभार्थियों को अब नई स्टेट एज पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन ये पेंशन अब मींस टेस्ट के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसमें नौकरी से होने वाली आय, मकान किराए से मिलने वाली आय, पेशेवर गतिविधियों से आय तथा कंट्रीब्यूटरी पेंशन को भी पेंशन पात्रता के आकलन में शामिल किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सितंबर 2026 से अगस्त 2029 के बीच 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले लोगों के लिए ट्रांजिशनल डिस्पोजिशन लागू रहेगी। ऐसे लाभार्थी 60 वर्ष की आयु से पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं या फिर इसे 70 वर्ष तक स्थगित करने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 65 वर्ष से पहले पेंशन प्राप्त करता है तो उसकी पेंशन में हर महीने 0.5% यानी सालाना 6% की कटौती की जाएगी। वहीं जो लोग 65 वर्ष के बाद पेंशन लेना टालेंगे उन्हें हर साल 9% तक की वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सीएसजे रिटायरमेंट बेनिफिट को फिर से लागू किया जाएगा। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को स्टेट एज पेंशन में प्रति माह 1,000 रुपए से 2,500 रुपए तक की अतिरिक्त वृद्धि मिलेगी। सरकारी अनुमान के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 97% यानी 2,63,200 वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन को पूरी या आंशिक पेंशन मिलती रहेगी, जिनकी मासिक आय 14,001 रुपए से 50,000 रुपए के बीच है उन्हें कम पेंशन दी जाएगी। ये वर्ग लगभग 47,300 लोगों का है, जबकि जिनकी मासिक आय 50,000 रुपए से अधिक है वे अब पेंशन के पात्र नहीं होंगे। ये संख्या लगभग 8,600 लोगों की बताई गई है।
1: मॉरिशस लेबर कांग्रेस पेंशन में सुधार के फैसले से खुश नहीं है। श्रमिक संघ ने इसे एक नाइंसाफी करार दी है। एक विज्ञप्ति में अध्यक्ष आनिफ पिहन ने कहा कि नई पेंशन प्रणाली से एक सामाजिक बुनियाद पर असर हो रहा है।

0: है बहुत से बुजुर्गों पर प्रभाव पड़ेगा। इस सुधार पर MLC ने बड़ी चिंता जाहिर की क्योंकि ये कदम आवाम की भलाई और फायदों से बहुत अलग हैं। प्रणव बिहारी, अशिता रघु।
1: मॉरिशस लेबर कांग्रेस ने सरकार द्वारा प्रस्तावित नई पेंशन व्यवस्था, जिसे मौजूदा बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह लागू किया जाना है, को एक गंभीर सामाजिक अधिकारों पर चोट बताया है। संघ के अध्यक्ष हनीफ पीरन का कहना है कि इस सुधार के कारण कुछ लाभार्थियों की पेंशन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, जबकि हजारों अन्य लोगों की पेंशन में भारी कटौती होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ प्रभावित लोगों के लिए प्रस्तावित ₹1,000 की सहायता राशि उनके अनुसार एक अपमान है। संघ ने स्पष्ट किया है कि वह वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन सरकार के पास ऐसे अन्य विकल्प मौजूद हैं जिनसे सार्वजनिक खर्चों का वित्त पोषण किया जा सकता है बिना रिटायर्ड नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित किए। मॉरिशस लेबर कांग्रेस ने आगे कहा कि प्रस्तावित टारगेटिंग मैकेनिज्म अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। संगठन ने सरकार से इस सुधार को तुरंत रोकने, सामाजिक साझेदारों के साथ व्यापक परामर्श शुरू करने और एक अधिक न्यायसंगत तथा अधिकार सम्मानित समाधान प्रस्तुत करने की अपील की है।
0: बजट 2026-2027 की पेशकश के बाद आज से राष्ट्रीय सभा में बहस सत्र शुरू होंगे। प्रधान एवं वित्त मंत्री अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 को दूसरी पढ़त पर प्रस्तुत करेंगे। सांसद, मंत्री और जूनियर मंत्री बजट में मुख्तलिफ मंत्रालयों और तबकों के लिए घोषित कदमों पर सवाल करेंगे। गैर सरकारी संगठन मुना चैरिटी ने बजट में शिक्षा, सामाजिक अखंडता और पढ़ाई में मुश्किलों का सामना कर रहे या खास जरूरतें पढ़ने वाले बच्चों की मदद के लिए घोषित कदमों पर तसल्ली जताई है। तंजीम के CEO सैमुअल कारियापेन के मुताबिक, ये ऐलानात एक अहम कटिबद्धता दर्शाते हैं जो मॉरिशस की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए है। उन्हें सुनते हैं, राजमिला सीतामुनि ने उनसे बात की।
2: हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अंदरूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जैसे डिसलेक्शिया, ADHD, न्यूरोलॉजिकल डाइवर्शन तथा अन्य। और दुख की बात ये है कि इन बच्चों का जल्द पता नहीं चलता है। इस दौरान स्कूली स्तर पर ये पीछे रह जाते हैं और इसके पीछे का कारण भी इन्हें नहीं पता होता। मॉरिशस में गरीब बच्चों की सहायता करती हैं जिनके पास ट्यूशन के लिए साधन नहीं। फिर मानसिक सहायता भी हम प्रदान करते हैं। शिक्षा मंत्रालय व NEF की ओर से भी बच्चे हमारे पास आते हैं। इसके साथ साथ चंद स्कूल व संस्थाएं भी शामिल हैं।
0: हालिया बजट में मैटरनिटी को लेकर जो बड़ी घोषणा की गई है उस पर बहुत संतुष्टि जताई जा रही है, लेकिन छोटे एवं मध्यम उद्योगों में राय अलग अलग है। बच्चे को जन्म देने के बाद माँ को 6 महीनों का पेड लीव मिलता है और बाकी के 6 महीने उस पर निर्भर हैं कि वो लेना चाहेगी या नहीं, जिसकी आधी तनख्वाह प्राप्त की जाएगी जो मालिक पर मुनहसर है। कंपनी मालिकों का यही फिक्र है कि किस तरह कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव के दौरान रिप्लेस किया जाएगा, वो भी कंपनी की गतिविधियां बरकरार रख कर अतिरिक्त दामों का सामना करते हुए। SME चेंबर के मुताबिक 1 साल की मैटरनिटी लीव से कर्मचारियों के संचालन में दिक्कतें होंगी और उद्योगों का बोझ भी बढ़ जाएगा। SME चेंबर की उपाध्यक्षा माया सेवनाथ ने आशी बच्चू से बात की। उन्हें सुनते हैं, अशिता रघु की जबानी।
3: हम आश्चर्य में हैं क्योंकि ये फैसला लेने से पहले किसी से भी परामर्श नहीं किया गया। मतलब ये होता है कि यदि कल एक 20 से 40 वर्ष की उम्र के बीच की एक महिला को नौकरी के लिए भर्ती किया जाता है और इसके दौरान वह गर्भवती हो जाती है, तो हमें इसका भी प्रावधान करना होगा कि वह 1 साल के लिए नौकरी पर नहीं आएगी तथा उस महिला को रिप्लेस करने के लिए एक अन्य व्यक्ति को ढूंढना होगा। ऐसे में क्या कोई भी व्यक्ति केवल 1 साल के लिए नौकरी करने के लिए आएगा, जिसके बाद उसे बाहर निकाला जाएगा? विशेषकर यदि वह व्यक्ति काफी अनुभवी है, तो ऐसे में उसके साथ अन्याय होगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। अतः मालिक के पास एक विकल्प चुनना होगा, विशेषकर 20 से 40 वर्ष के बीच की महिलाओं को भर्ती करने से पहले।

0: रेजवी ट्रायंगल में मुर्शिद सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से बहुत जल्द सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर का निर्माण आरंभ कार्य आरंभ होने वाला है। इस संदर्भ में आज शिलान्यास विधि यानी कल शिलान्यास विधि एवं भूमि पूजा का भव्य आयोजन किया गया। सनातन धर्म के हितधारक और अनुयायियों ने इस धार्मिक समारोह में भाग लिया। सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य 2 बीघा जमीन व 1500 वर्ग फुट पर विस्तृत होगा। करुणा लालू।
1: रेजू में सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के परिसर में 2 बीघा जमीन पर सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। 15,000 वर्ग फुट का एक बृहद हॉल जहां फेडरेशन की गतिविधियां चलाई जाएंगी। भवन के निर्माण कार्य की शुरुआत से पहले आज भूमि पूजा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य निर्माण स्थल को शुभ बनाना और कार्य की सफलतापूर्वक पूर्णता के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना रहा। भूमि पूजन से पूर्व मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से यज्ञ भी किया गया। इसमें गुरुकुल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अवसर पर कई महानुभाव उपस्थित रहे। सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा, सनातन वाटिका की योजना वर्तमान कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले साकार कर दी जाएगी। भोजराज गुड़बिन ने इस वास्ते सभी लोगों के सहयोग एवं समर्थन की मांग की।
2: तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चाहूं और वशीकरण एक मंत्र है तजिदे वचन कठोर। जो वचन हम लोगों ने लिए थे हमारी टीम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के टीम ने जो वचन लिए थे आज हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। ये हॉल 100% ये हॉल बनेगा 2029 से पहले। ये हॉल हमारा लक्ष्य है, ये बनना ही चाहिए।
1: मुख्य अतिथियों में भारत से आए डॉक्टर श्री राजर्षि भूपेंद्र मुर्दी जी उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी हिंदुओं को संगठित होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों को धार्मिक पुस्तकें भी भेंट की।
0: उर्दू स्पीकिंग यूनियन की जानिब से दीगर कैटेगरियों में कौमी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। दर्जा 7 से दर्जा 13 के करीब 170 बच्चों ने हिस्सा लिया। फाइनल्स 15 जून को इस्लामी सकाफती सेंटर पोटलवी में लगे। तलबा ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से जबान की रवानी खूबसूरत लहजा और तलफ़ुज़ और निराले अंदाज में अपनी काबिलियतों को उजागर किया। पेश है फाइनल्स की रिपोर्ट शहजाद जुमन की जबानी।

0: परफॉर्म करने से पहले जो हिचकिचाहट होती है और जो डर लगता है, स्टेज पर आकर बेबाकी से उन्होंने अपनी काबिलियत और जबान की शायस्तगी को आम किया। इन नई नस्लों ने अपनी कम उम्र के बावजूद काबिलियत परफॉर्मेंस दिया।
1: 12 मार्च 1968, जरा तसव्वुर करें वरना
2: अजीब लोग हालात के मोहताज नहीं होते बल्कि वो खुद हालात को बदल देते हैं।
0: ड्रामेबाजी, तकरीर, बैतबाजी और न्यूज रीडिंग में इन मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुल्क के दीगर स्कूलों और कॉलेजों से कुल 167 एंट्रीज मिले थे, जिनमें 17 फाइनलिस्टों का इंतखाब किया गया।
3: मैंने पहली बार इस मुकाबले में हिस्सा लिया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं फाइनलिस्ट में शामिल हूँ।
4: मैं पहली बार उर्दू में स्केच कर रहा हूँ। इस मुकाबले से मैं उर्दू बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूँ।
5: इस बेबासी कंपटीशन में हिस्सा लेकर मुझे बहुत से उर्दू अशआर सीखने का मौका दिया, जो मेरे इम्तिहानात के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये मेरे उर्दू जबान को बेहतर बनाती है।
0: इस साल उर्दू स्पीकिंग यूनियन जबान को फ़रोग देने के लिए एक तब्दीली लाया। पहली दफ़ा मुल्क में न्यूज़ रीडिंग मुकाबला मुनक्किद किया गया। मकसद, रोज़मर्रा ज़िंदगी के हालात को उर्दू ज़बान में

0: समझना, दूसरों तक पहुंचाना और बच्चों को उर्दू में बोलने और ख्याल करने की हिम्मत देना है।
1: मॉरिशस में सफाई और शहरकारी मुहिम का आगाज, कई ममालिक में शदीद गर्मी की लहर, फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों में

0: طلبہ اپنی اردو زبان تلفظ اور روانی کو بہتر بناتے ہیں اور قومی اور بین الاقوامی حالات سے بھی باخبر رہتے ہیں آج کے دور میں ایک اچھے طالب علم کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے بھی آگاہی ضروری ہے
1: محترم ناظرین آداب آج بروز پیر 11 میں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے وطن
2: نیوز ریڈنگ میں کوچی ملتی ایس ایس ایس کی طالبہ ہانیہ غمجن نے بازی اپنے نام کی بابائے قوم سرسیو سگر رام غلام پر تقریر کے مقابلے میں دھوپنا تھامفل اسٹیٹ کالج کی سبیحا ایڈو اولائی اسکیچ میں موہن لال موہت سرکاری اسکول کی جیت ہوئی اور بیت بازی کا تاج دیوانہ گروپ کو گیا
3: لیپٹوسپائرس سے پیڑت ایک نئی موت درج ہوئی ہے سٹینلی روزل کی 77 ورشہ مہیلا نہیں بچ سکی 16 جون کو کونڈس کے وکٹوریا اسپتال میں ان کی بھرتی کی گئی سوتروں کے مطابق باغبانی کے دوران انہیں یہ بیماری لگی ہوگی اب تک لیپٹوسپائرسس کے 27 معاملے درج ہو چکے ہیں اور کل 7 لوگوں کی موت ہوئی ہے ادھیکاری سبھی طرح کی ساودھانی برتنے کی مانگ کر رہے ہیں خاص طور پر باغبانی یا باہر کے کام کرتے ہوئے پانی یا کیچڑ سے دستانے اور اچھے جوتے پہننے کا مشورہ دیا جا رہا ہے بخار بدن میں درد یا بے آرامی ہونے پر ڈاکٹر سے فوراً معائنہ کروانے کی مانگ کی جا رہی ہے विदेश की खबरों में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर के स्टॉमर के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा दबाव है उनके इस्तीफे के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है पिछले हफ्ते मेकरफील्ड बाई इलेक्शन में एंडी बर्नहम की जीत के बाद लेबर पार्टी के लीडर को लेकर उनके लिए एक नई चुनौती पैदा हो गई है अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी को आखिरी रूप देने के लिए बातचीत जारी है स्विट्जरलैंड में उच्च सतह वाला सत्र लग रहा है पिछले हफ्ते दोनों मुल्कों ने अमन कायम करने के मकसद से आपस में समझौता तय करने पर रजामंदी जताई थी वो भी 60 दिनों के अंदर अंदर बातचीत कुछ धुंधली शर्तों पर स्पष्टीकरण लाने के लिए की जा रही है खासतौर पर अब आबनाए हॉर्मूज को दोबारा खोलने के सिलसिले में दक्षिणी लबनान में हमलों को भी बंद करने का शर्त है और परमाणु समझौते के भी पहलू शामिल हैं। और अब फुटबॉल विश्व कप पर ये खबर स्पेन ने सऊदी अरेबिया को 4-0 से हराया है बेल्जियम और ईरान के बीच खेला गया मैच ड्रो रहा यानी किसी की भी जीत नहीं हुई है यूरुग्वे और काबोवेद का मैच भी ड्रो रहा है स्कोर 2-2 रहा न्यूजीलैंड और इजिप्ट का मैच अभी चल रहा है और इजिप्ट 3-1 से न्यूजीलैंड को हरा रहा है आज रात अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा और कल यानी रात के 1 बजे फ्रांस और इराक के बीच मैच खेला जाएगा और अब करते हैं मौसम की बात मॉरीशस में आज रात 10 बजे तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है मस्केरिन्स के दक्षिण पश्चिम में जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके में ठंडी हवाएं चलेंगी अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह घने बादल होंगे हवाई ढलानों पर हल्की बारिश होगी और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे और हवाई ढलानों पर खास तौर पर हल्की वर्षा होगी हवा दक्षिण की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं लगून के उस पार समुद्र निहायत ही खराब रहेगा 4 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाली लगूनों में इसी वजह से सभी प्रकार की सावधानियां बरतने की मांग की जा रही है मछुआरों स्कीपरों और आम जनता से सावधान रहने की मांग है तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16 अधिकतम 21 से 23 साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20 अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा सूर्योदय 6:45 सूर्यास्त 5:39 पर

आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश हैं। पेंशन प्रणाली में नए सुधार को लागू करने के लिए योग्यता का जायजा लिया जाएगा, एक मींस टेस्ट किया जाएगा। बजट 2026-2027 पर आज से बहस सत्र शुरू। राष्ट्रसभा में प्रधान एवं वित्त मंत्री अप्रोप्रिएशन बिल 2026

2027 को दूसरी पढ़त पर भी पेश करेंगे। मैटरनिटी लीव को एक साल तक बढ़ाने पर जहां खुशी और राहत है, वहीं उद्योगों पर बड़ा दबाव होने का फिक्र है। एसएमई चैंबर का मानना है कि ये कदम घोषित करने से पहले उद्योगों से सलाह मशवरा करना चाहिए था। और अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर बातचीत, समझौते की कुछ शर्तों पर स्पष्टीकरण पाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें समाचार और फ्रेंच विभागों और हमारे तकनीकी साथी कार्या कुदारिन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार और आदाब। शोक समाचार सुनिए।

शोक समाचार सुनिए। रिचलियो ब्रांच रोड कोरोमंडल में, रिचलियो ब्रांच रोड कोरोमंडल में 89 साल के 89 years old श्री विद्यानंद सोमू, श्री विद्यानंद सोमू जो पूर्व पुलिस कॉर्पोरल थे और आनंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सवा दो बजे इनके घर रिचलियो ब्रांच रोड कोरोमंडल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:15 PM। कालीमाई रोड रविया जोरोंपर में 63 साल के 63 years old श्री राम प्रकाश मथुरा की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सवा बारह बजे इनके घर कालीमाई रोड रविया जोरोंपर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:15 PM। एवेन्यू पॉवर विलमे कौचि मिलीतिया में 75 साल की 75 years old श्रीमती सुमित्रा रामसरन पैदाशी नाम भीका जो मानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे इनके पति बिसुन बागीवान के रामसरन के घर एवेन्यू पॉवर विलमे कौचि मिलीतिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विलमें की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM रॉयल रोड मोताई ब्लॉन्च में 61 साल के 61 years old श्री हंसराज बरन जो संजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज ढाई बजे के घर रॉयल रोड मोताई ब्लॉन्च से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉन्च की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM NHDC पोस्ट डू फ्लैक में 57 साल के 57 years old श्री धर्मेंद्र बंधु जो संजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे इनकी पत्नी पार्वती बंधु के घर NHDC पोस्ट डू फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलेमोंग पोस्ट डू फ्लैक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डे एट 11 AM रामगुलाम रोड अपरवेल में 34 साल की 34 years old श्रीमती सरिता रामबरन जो स्वीटी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे की माँ दालामती रामबरन के घर रामगुलाम रोड अपरवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कापमालोय की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM मॉरिस रोड मेबर्ग में 89 साल की 89 years old श्रीमती दनवतिया गोपी पैदाशी नाम जीवुत जो छुटकी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े बारह बजे इनके बेटे इंद्रदेव गोपी के घर मॉरिस रोड मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मेबर्ग की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM ट्राइंगल गुडलैंड्स में 69 साल की के 69 years old श्री देवानादा पालानी जो सिवा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 12 बजे इनकी पत्नी माधुरी पालानी के घर ट्राइंगल गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:00 PM महात्मा गांधी रोड पिछे राफ्री में 62 साल की 62 years old श्रीमती सुभावती जागेसौ

0: श्रीमती सुभावती जगेसा पैदाइशी नाम अरुणाचलम, जो ललिता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, और जो हमारी सहयोगी दिया जगेसा की माँ थी, की मृत्यु हो गई हैं और थी आज एक बजे इनके बेटे संजू जगेसा के घर महात्मा गांधी रोड पिचराफरे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल पिचराफरे की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। आर्या मंदिर रोड गुडलैंड्स में 75 साल की श्रीमती घनवंती सिगुलन, पैदाइशी नाम लुलमान, जो सुभावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं और थी आज 11 बजे इनके बेटे साइलेश सिगुलन के घर आर्या मंदिर रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआरूज गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। बिसुंडियाल लेन नौसेनाल में 66 साल के श्री राजलाल दीना, जो मिकेल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं और थे आज 10 बजे इनके बेटे यमराज दीना बिसुंडिया के घर बिसुंडियाल लेन और सेनार से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टियामी न्यूज त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे 10 AM। पायलट स्ट्रीट जुब्रॉय में 74 साल के श्री धनपत पांड्या, जो धन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं और थे आज सुबह नौ बजे इनके घर पायलट स्ट्रीट जुब्रॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीगा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। ओफ्रे लेन मेबर्ग में 93 साल की श्रीमती फुलमत लोलित, पैदाइशी नाम टीपू, जो फुलमत के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई हैं और थे आज दो बजे इनकी बेटी सीता लोलित के घर ओफ्रे लेन मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो लेन मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। ला मैरी रोड कैस कॉन्टों वाकवा में 48 साल की श्रीमती नताशा हरनंगी, जो ताशा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, कि मृत्यु हो गई हैं और थी आज 11 बजे इनके घर लामाही रोड कैस कॉन्टों वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ओंगियता वाकवा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। डॉक्टर फेरगिया स्ट्रीट ट्रेफ्लोरोजिल में 73 साल के श्री दयानंद दीपदयाल, जो दया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं और थी आज 11 बजे इनके बेटे अंजय दीपदयाल के घर डॉक्टर फेरगिया स्ट्रीट ट्रेफ्लोरोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। बासन रोड कथबोन में 97 साल के श्री इस्नू डीओजी, जो गौसों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं और थी आज डेढ़ बजे इनके घर बासन रोड कथबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: गायत्री जयंती के संदर्भ में वेद माता गायत्री शक्ति पीठ सोमवार 22 जून को सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक वाल्टों गायत्री माता मंदिर में अखंड जाप का आयोजन कर रहा है। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस सोमवार 22 जून को बेल रोज आर्य समाज ऑल मोका रोड शाम के 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स
1: न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्दे का सुहाना सफर, ड्रीम रन जारी है। स्पेन को रोकने के बाद इस बार यूरुग्वे को टोका। अफ्रीका के द ब्लू शॉक्स इस बार यूरुग्वे के खिलाफ ड्रॉ कर पाए 2-2, मतलब दो मैच दो ड्रॉ। स्पेन के खिलाफ ड्रॉ मैच कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यूरुग्वे के खिलाफ ड्रॉ मैच ने साबित कर दिखाया कि केप वर्दे को हराना आसान नहीं है। अटलांटिक ओशन में 10 छोटे द्वीप यानी आइलैंड आर्चिपेलागो, केवल 525,000 लोगों का केप वर्दे वर्ल्ड कप में अपना छाप छोड़ रहा है, अपनी पहचान बना रहा है। स्पेन की आसान जीत 4-0 से सऊदी अरेबिया के खिलाफ, पहला गोल लामिन यामाल का रहा, फिर मिकेल ओयोजाबाल का डबल, फर्स्ट हाफ में 3-0, सेकंड हाफ में हसन अल तबाती का ऑन गोल। स्पेन 4 अंक के साथ आगे है।

उरुग्वे और केप वर्दे के पास दो दो अंक है, सऊदी अरेबिया के पास एक अंक। कल सुबह जापान ने 4-0 से ट्यूनीजिया को हराया था। बेल्जियम भी फंस गया, ईरान के खिलाफ मैच ड्रो गया 2-0। ये दूसरा ड्रो है बेल्जियम के लिए। आखिरी मैच बेल्जियम का न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा, जबकि ईरान खेलेगा इजिप्ट के खिलाफ। और इसी समय न्यूजीलैंड और इजिप्ट के बीच मैच 3-1 से इजिप्ट की टीम की जीत हो रही थी। फर्स्ट हाफ में न्यूजीलैंड का गोल सुरमान के जरिए, सेकंड हाफ में मुस्तफा जीको ने इक्वलाइज किया, फिर मोहम्मद सलाह ने स्कोर किया, तीसरा गोल सलाह के पास पर ट्रेजेगे ने स्कोर किया। आज रात के मैच 9 बजे ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, ग्रुप आई में 1 बजे फ्रांस वर्सेस इराक, फिर कल सुबह 4 बजे नॉर्वे सेनेगल और सुबह 7 बजे जॉर्डन अल्जीरिया। ये आज और कल के फिक्स्चर्स हैं। क्रिकेट, टीम इंडिया का युवा सेंसेशन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। इंडिया ए के लिए श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल में वैभव ने हाफ सेंचुरी केवल 11 गेंदों में, 11 बॉल 50, ये लिस्ट ए 50 ओवर क्रिकेट में पहली बार हुआ। 94 रन बना पाया वैभव सूर्यवंशी। फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराया। और एटीपी क्वींस चैंपियनशिप टेनिस की बात करें हैं, फाइनल में सेरुंडुलु ने जीता, पोल को हराया उसने फाइनल में। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

7:12 हुए हैं श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। नमस्कार आप सबको, आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। आज सोमवार 22 जून 2026, जी हाँ, एक खूबसूरत दिन है। और यहाँ पर सुबह का नजराना प्रोग्राम हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, हर सुबह आप लोगों की सेवा में। और आज मैं उषा कौर यहाँ पर, आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वीकेंड अभी गुजरा है, आप लोगों के लिए कैसा रहा ये भी बताइए, आपके यहाँ मौसम कैसा है ये भी बताइए। और उम्मीद है कि जो गाने हमने तैयार किया है, प्लेलिस्ट तैयार किया है आप लोगों के नाम, आपको पसंद आएगा। अभी के लिए तो चलिए सुनते हैं चिंतन डॉक्टर शांति मोहाभीर जी से।

0: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: अहंकार रिश्तों में दीवार बनाता है, जबकि विनम्रता रास्ते खोल देती है। झुकना हार नहीं, समझदारी होती है। जो झुकना सीख जाता है, वह सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाता है। जीवन में सरल बनिए, जीवन आसान लगेगा।

7:21 हुए है दोस्तों। कहते हैं ना, हर आम व्यक्ति के अंदर एक खास कहानी छुपी होती है। आम इंसान छोटा जरूर लगता है, पर उसकी मेहनत दुनिया चलाती है। जो चुपचाप जिम्मेदारी निभाता है, वही असली मजबूत व्यक्ति होता है। जी हाँ, कुछ लोग बस चुपचाप रहते हैं, लेकिन संघर्ष बहुत करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत गाना, आदमी सड़क का, फिल्म से लिया गया, रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: जब किया इरादा पक्का कि मैं हूँ आदमी सड़क का, कि मैं हूँ आदमी सड़क का।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

7:31 हुए हैं दोस्तों। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं असली और नकली पर एक छोटी सी कहानी। एक गांव में दो चेहरे बहुत मशहूर थे। एक व्यक्ति हर वक्त मीठी बातें करता, सबके सामने अपनापन दिखाता, लेकिन उसके शब्द सिर्फ दिखावा थे। दूसरा व्यक्ति ज्यादा बोलता नहीं था, पर हर मुश्किल में चुपचाप सबका साथ देता था। समय बदला, एक दिन गांव में कठिन समय आया। मीठी बातें करने वाला व्यक्ति सबसे पहले पीछे हट गया और वही चुप रहने वाला इंसान सबके आंसू पोंछता रहा। तब लोगों को समझ आया कि असली इंसान वो नहीं जो सिर्फ शब्दों से दिल जीत ले, बल्कि वो है जो दर्द के समय बिना मतलब के साथ निभाए। नकली चमक आंखों को कुछ पल के लिए ज़रूर पसंद आती है, लेकिन असली व्यक्ति हमेशा दिल में जगह बना लेता है।

जी हाँ श्रोताओ, अब तो सर्दी का मौसम है। ठंड का मौसम सिर्फ सर्दी नहीं लाता बल्कि ज़िंदगी की रफ्तार को भी हल्का सा ठहरा देता है। गर्म चाय की चुस्की, धूप का एक टुकड़ा और अपनों की बातें, यही छोटी छोटी चीज़ें इस मौसम को खूबसूरत बना देती है। लेकिन क्या करें, सुबह सुबह उठकर काम पर जाना होता है और यही मुश्किल है, लेकिन क्या करें, यही जीवन है और हमें यही करना चाहिए। और जो बच्चे लोग उठकर स्कूल जाना पड़ता है, उनके लिए भी मुश्किल होता है। तो चलिए, लेकिन हम यहाँ पर है आप लोगों का साथ देने के लिए। अगला गाना सुनते हैं नमक हराम, फिल्म से लिया गया किशोर दा की आवाज़ में।

7:52 हुए हैं दोस्तों। चले खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। 8 बजे भोजपुरी समाचार। अभी के लिए चलिए परवाना फिल्म से लिया गया दो महान कलाकार की आवाज़ों में, किशोर झा और रफ़ी साहब की आवाज़ों में, यूना शर्मा फैला दे। और यही गीत हमें लेकर जाएगा 8 बजे के समाचारों की ओर। तो हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: आवाजा समाचार सुने जा। बजट 2026-2027 के पेशकश के बाद आज से राज्यसभा में बहस सत्र शुरू होवेला। प्रधान एवं वित्त मंत्री अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 के दूसर पहर पर प्रस्तुत करेला करियंजा। सांसद मंत्री और जूनियर मंत्री बजट में मुख्तलिफ मंत्रालय खातिर घोषित कदम पर सवाल करेला। मॉरिशस लेबर कांग्रेस पेंशन में सुधार के फैसले से खुश नहीं बा। श्रमिक संघ ई हाई के नाइंसाफी बताए लेला। एगो विज्ञप्ति में अध्यक्ष हनीफ पिगन कहेला कि नवा पेंशन प्रणाली से एगो सामाजिक बुनियाद पर असर परता और बहुत से बुजुर्ग पर प्रभाव परता। हालिया बजट में मैटरनिटी के लेके जन बड़ा घोषणा करल गल बाते। ए पर बहुत संतुष्टि जताई ले बा, लेकिन छोटे व मध्यम उद्योग में राय अलग अलग बाते। बच्चा लड़का के जन्म देने के बाद माँ के 6 महीना के पेड लीव मिला था और बाकी के 6 महीना उस पर निर्भर बा कि उ लेना चाहे या नहीं। जेकर आधी तनख्वाह प्राप्त करे जा सकें जिन मालिक पर मुनहसर बातें। कंपनी मालिक के यही फिक्र बातें कि किस तरह कर्मचारी लोग के मैटरनिटी लीव के दौरान रिप्लेस करे सकें जा। वो भी कंपनी के गतिविधि बरकरार रख के अतिरिक्त दाम के सामना करते हुए। लिप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित एगो नवा मौत दर्ज होवेला। स्टैनली रोजिल के 77 वर्षीय महिला नहीं बच सकेला। 16 जून के कांडोस के विक्टोरिया अस्पताल में ओकर भर्ती करल गल। विदेश में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के आखिरी रूप देवे खातिर बातचीत जारी बा। स्विट्जरलैंड में उच्च सतह होला सत्र लगेला। गत हफ्ता दोनों मुल्क अमन कायम करे के मकसद से आपस में समझौता तय करे पर मंजूरी जतैलन बा। त ई रहल समाचार। नमस्ते और सलाम।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Docteur Ferrière Street Trèfle Rosil Métin Corité Rabariske, 73 ans, Shri Dayanand Dibdiyal, Shri Dayanand Dibdiyal, Jundaya ke naam se jasti jan jatra lan gujar galhavan, inkar mati aaj 11 baje, inkar beta Anjay Dibdiyal ke ghare, Docteur Ferrière Street Trèfle Rosil se utha ke antim sanskar khatir, कौन लिव्यू के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे आती 11 AM। लामारी रोड कैस कांटों वाकुआ में दुकोरी 8 बरिस के 48 श्रीमती नताशा हरनंगी, श्रीमती नताशा हरनंगी जनताशा के नाम से जस्त जाने जात्रा लन गुजर कल हवन इनकर माती आज 11 बजे इनकर घरे। लामारी रोड कैस कांटों वाकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर अंकिता वाकुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे आती 11 AM। ओफ्रे लेन मेबर्ग में 4 कोरी 13 बरिस के 93 श्रीमती फुलमत लोलित, श्रीमती फुलमत लोलित पैदाशी नाम टीपू जन फुलमत के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज दो बजे इनकर बेटी सीता लोलित के घरे। ओफ्रे लेन मेबर्ग से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तोम्बो लेन मेबर्ग की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। पायलट स्ट्रीट जुब्रॉय में 3 कोरी 14 बरिस के 74 श्री दनपत पांड्या, श्री दनपत पांड्या जनधन के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर कर हवन इंकर माती आज नौ बजे इंकर घरे। पायलट स्ट्रीट जुबॉय से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बीकाका के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 9 AM। बिसुंडिया लेन और सेनाल में 3 कोरी 6 बरिस के 76 श्री राजलाल दीना जिन मिकेल के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर गल हवन इनकर माती आज 10 बजे इनकर भाई यमराज दीना के घरे। बिसुंडिया लेन और

नाल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर त्या मिनिस्त्रियों लेके शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू दैट 10 AM आर्या मंदिर रोड गुडलैंड स्मिति कुरी 15 बरिस के स्वसन कैजों श्रीमती घनवंती सिगोलन श्रीमती धनवंती सिगोलन पैदाशी नाम लुलमान जिन सुभावती के नाम से जस्ती जाना जातरलन गुजर कल हवन इंकर माथी आज ग्यारह बजे इंकर बेटा साइलेश सिगोलन के घरे आर्या मंदिर रोड गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुआरूज गुडलैंड के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 11 AM महात्मा गांधी रोड पिचराफ्रे में 3 करी 2 बरिस के 62 श्रीमती सुभावती जोगेसौ श्रीमती सुभावती जोगेसौ पैदाशी नाम अरुणाचलम जिन ललिता के नाम से जस्ती जाना जातरलन और जिन हमारी सहयोगी दिया जगेसौ के मारलन गुजर कल हवन करमाती आज एक बजे कर बेटा संजू जगेसौ के घरे महात्मा गांधी रोड पिचराफ्रे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोमास्काल पिचराफ्रे के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 1 PM ट्राइंगल गुडलैंड्स में 3 करी 9 बरिस के 69 श्री देवानादा पालानी श्री देवानादा पालानी जिन सिवा के नाम से जस्ती जाना जातरलन गुजर कल हवन इंकरमाती आज बारह बजे इंकर पत्नी माधवी पालानी के घरे ट्राइंगल गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर दागोची के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डे एट नून मोरिस रोड में बर्ग में 4 करी 9 बरिस के 89 श्रीमती धनवतिया गोपी श्रीमती धनवतिया गोपी पैदाइशी नाम जीवुत जिन छुटकी के नाम से जस्त जान जातरलन गुजर कल हवन इंकर माती आज बारह बज के आधा इंकर बेटा इंद्रदेव गोपी के घरे मोरिस रोड में बर्ग से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तोम्बू में बर्ग के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डे एट 12:30 राम गुलाम रोड अपवेल में 1 करी 14 बरिस के 34 श्रीमती सरिता रामबरन जिन स्वीटी के नाम से जस्ती जान जातरलन गुजरगल हवन इंकर माती आज एक बजे इंकर माँ दालामती रामबरन के घरे राम गुलाम रोड अपवेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कापमालोय के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डे एट 1 PM NHDC पॉजिटिव फ्लाक में 2 करी 17 बरिस के 2nd Seton श्री धर्मेंद्र बंधु जिन संजय के नाम से जस्ती जाने जातरलन गुजर कल हवन इंकर माती आज ग्यारह बजे इंकर पत्नी पार्वती बंधु के घरे NHDC पोस्ट डिफ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आलिमोंग पोस्ट डिफ्लाक के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डे एट 11 AM रॉयल रोड मुदाइव लॉश में 3 करी 1 बरिस के 69 श्री हंसराज बरन जिन संजय के नाम से जस्ती जान जातरलन गुजर कल हवन इंकर माती आज दो बज के आधा इनकर घरे रॉयल रोड मोताई ब्लॉश से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोताई ब्लॉश के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM पोआव्र एवेन्यू विलमेक क्वार्टर मिलिटिया में 3 करी 15 बरिस के 75 श्रीमती सुमित्रा रामसरन पैदाइश नाम भिका जन्मांति के नाम से जस्ती जान जातरलन गुजर गल हवन इंकर माती आज एक बजे इंकर पति बिसुन बागेवन के रामसरन के घरे एवेन्यू पोआव्र विलमैक कौची मिलिटिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर विलमैक के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 1 PM काली माई रोड रिविया जो पर में 3 करी 3 बरिस के 63 श्री राम प्रकाश मथुरा जिन पाइनी के नाम से जस्ती जान जातरलन गुजर गल हवन इंकर माती आज सवा बारह बजे इंकर घरे काली माई रोड रिविया जॉँ पर से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पीतों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 12:15 रिशलू ब्रांच रोड कोरोमंडल में 4 करी 9 बरिस के 89 श्री विद्यानंद सोमू जिन पुलिस कोपुरल रहलन और आनंद के नाम से जस्ती जान जातरलन को जरगल हवन इंकर माती आज सवा दो बजे इंकर घरे रिशलू ब्रांच रोड कोरोमंडल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर शबैल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 12:15 PM बासन रोड कथोबोन में 4 करी 17 बरिस के 97 श्री इजनू देव जी जिन गौसों के नाम से जस्ती जान जातरलन गुजर गल हवन इंकर माती आज एक बज के आधा इंकर घरे बासन रोड कथोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए

0: Permission today at 1:30 PM, Rue d'Oiseau Saint-Croix-Mé, Dokoritin Bariske, 43 ans, Shri Ashwin Ramtale, Shri Ashwin Ramtale, Jun Baby ke naam se Justi Janu Chatralan, Gujar Galhavan, Inkar Mati aaj 3 baje, aaj 3 baje inkar ghare, Rue d'Oiseau Saint-Croix se utha ke antim sanskar khatir, Sipai Bhoile ke Shamshan Bhumi le javal jai, Cremation today at 3 PM. शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमने संवेदना प्रकट करे थी जा
1: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना,

0: आज बजकर 24 मिनट हुए हैं श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और यहाँ पर आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। अब समय आ गया है आपको सुनाने के लिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए।
1: आपकी राशि रेडियो मॉरिशस पर। एरीज मेष राशि।

0: ये सप्ताह आपके लिए नई ऊर्जा और नई सोच लेकर आ सकता है। काफी समय से जो काम रुक रुक कर चल रहे थे, हमने उनमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने के से मन को शांति मिलेगी। काम के दौरान गुस्से और जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा। लकी नंबर है 1, लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस वृषभ राशि।
0: इस सप्ताह आपका मन शांत और स्थिर रहने वाला है। पुराने संबंध दोबारा मधुर हो सकते हैं और किसी अपने से अचानक खुशी भरी बात हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखना उचित रहेगा। लकी नंबर है 2, लकी कलर है हरा रंग।
1: जेमिनी मिथुन राशि।
0: ये सप्ताह नए अवसर और नए लोगों से मिलने का योग बना रहा है। आपके विचार लोगों को प्रभावित करेंगे। यात्रा का योग भी बन सकता है जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होगा। लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा रंग।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: आपके लिए ये सप्ताह भावनाओं और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। परिवार के साथ आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफेद रंग।
1: लेव सिंह राशि।
0: ये सप्ताह आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। काम के क्षेत्र में प्रशंसा मिल सकती है और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। अहंकार और कठोर शब्दों से दूर रहें। लकी नंबर है 1, लकी कलर है सुनहरा रंग।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: आपकी मेहनत और ईमानदारी इस सप्ताह रंग ला सकती है। छोटी बातों को मन पर लेना आपको परेशान हो सकता है, इसीलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें। लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा रंग।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: ये सप्ताह रिश्तों में मधुरता और अपनापन लेकर आएगा। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और नए संबंध भी मजबूत होंगे। खान पान पर ध्यान देना होगा। लकी नंबर है 6, लकी कलर है गुलाबी रंग।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आपके मन में नए सपने और नए इरादे जाग सकते हैं। काम में प्रगति मिलेगी और मेहनत का फल भी धीरे धीरे सामने आएगा। लकी नंबर है 3, लकी कलर है लाल रंग।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: भाग्य का साथ इस सप्ताह आपको कई नए रास्ते दिखा सकता है। यात्रा और नए काम के योग बन रहे हैं। धैर्य बनाए रखें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। लकी नंबर है 7, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: ये सप्ताह जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। काम का बोझ बढ़ेगा लेकिन सफलता भी साथ लेकर आएगा। खर्च पर आप ध्यान अवश्य दें। स्वास्थ्य और आराम का ध्यान रखें। लकी नंबर है 8, लकी कलर है नीला रंग।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: नए विचार और नए लोग इस सप्ताह आपके जीवन में खुशी ला सकते हैं। मित्रों और परिवार का साथ आपको प्रेरणा देगा। लकी नंबर है 7, लकी कलर है नीला रंग।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: ये सप्ताह आपके लिए शांति और भक्ति का संदेश लेकर आ रहा है। दिल और दिमाग का संतुलन बना रहेगा। परिवार के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा और यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में खान पान पर अवश्य ध्यान दें। लकी नंबर है 2, लकी कलर है आसमानी रंग।

0: 8:50 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। काल हमने देश भर में विश्व भर में एगो बहुत महत्वपूर्ण दिन मनाए लीजा, विश्व संगीत दिवस। और इस सब संगीत प्रेमी लोग खातिर एगो बहुत बड़ा दिन है। संगीत दिवस के शुरुआत 1982 में फ्रांस में हो रहा। बोलल जला फ्रांस के हर दूसरा व्यक्ति संगीत के कोनो न कोनो रूप से जुड़ल रहेला, चाहे वो गायक हो या कोई संगीत वाद्य बजावे होला। वो संगीत चाहे देसी हो या विदेशी, शास्त्रीय हो या सुगम, फ्रांसीसी के संगीत के प्रति दीवानगी के हद के देखते हुए 21 जून 1982 के आधिकारिक रूप से संगीत दिवस के घोषणा करा गया रहा। और अब धीरे धीरे दुनिया भर में ही मनावल जा रहा। आज के समय में संगीत एगो ऐसा सशक्त माध्यम बनकर बा जेकर प्रयोग वैज्ञानिक लोग द्वारा व्यक्ति के मानसिक रोग और तनाव से मुक्त प्रदान करे में करल जाला। कितने अध्ययन और विशेषज्ञ के अनुसार संगीत तनाव के कमती करे में और बेहतर नींद खातिर भी मददगार साबित होल बा। और फिर कैरियर के रूप में भी संगीत के क्षेत्र बहुत संभावना से भरल पड़ल बा। और वर्तमान समय में युवा वर्ग संगीत के अपनावत हवन सा। संगीत एगो ऐसा सांस्कृतिक धरोहर है जोन से दुनिया के कोना कोना में इंसान आजीविका कमावता। और यूनेस्को के ई एगो प्राथमिकता है कि धरोहर और संस्कृति चाहेला सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आमदनीशील रहेगे, जेकर से परिवार के खर्चा पानी चली और गरीबी दुनिया भर में मिट जाए। विश्व संगीत दिवस सब संगीत प्रेमी खातिर मुफ्त संगीत प्रदान करेला और अमात्य और पेशेवर संगीतकार लोग के दुनिया के सामने अपन प्रतिभा दिखावे खातिर एगो मंच प्रदान करेला। ई दिन संगीत के महत्व के उजागर करे खातिर मनावल जाला और ई मानव मन और शरीर खातिर फायदेमंद है। जैसे देखा था वह 21 जून एगो बहुत ही खास दिन है जहाँ पर योग दिवस मनावल जाला, साथ में इधर संगीत दिवस भी। और ई दोनों के प्रभाव मन मस्तिष्क और शरीर पर बराबर पड़ेला। आप सब कोई के योग दिवस और संगीत दिवस के एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते।

8:54 हुए हैं दोस्तों। अच्छा चलिए सुनते हैं ये भोजपुरी गीत, और यही गीत हमें लेकर जाएगा 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों की, और हमारी इसके बाद भूलिएगा नहीं, समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे आज की चर्चा कार्यक्रम नीतुषा के साथ। और मैं उषा आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, शुभ दिन आप सबको।

0: 19 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 9 बजे है। सुंदर संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा, नमस्कार।
2: नमस्कार आदाब सभी को। पेंशन प्रणाली में सुधार लाया जा रहा है, माहिरों के आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर रखा गया है। अब बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू होगा। वृद्ध पेंशन के लिए जो लोग योग्य होंगे उन्हें 60 साल से 70 साल के बीच पेंशन पाने का

0: फैसला लेना होगा। लाभार्थियों को पहचानने के लिए एक मींस टेस्ट भी किया जाएगा। मॉरिशस लेबर कांग्रेस पेंशन में सुधार के फैसले से खुश नहीं। श्रमिक संघ ने इसे एक नाइंसाफी करार दी है। एक विज्ञप्ति में अध्यक्ष अनिफ पेगन ने कहा कि नई पेंशन प्रणाली से एक सामाजिक बुनियाद पर असर हो रहा है, बहुत से बुजुर्गों पर प्रभाव पड़ेगा। इस सुधार पर MLC ने बड़ी चिंता जाहिर की क्योंकि ये कदम अवाम की भलाई और फायदों से बहुत ही अलग है। बजट 2026-2027 की पेशकश के बाद आज राज्यसभा में बहस सत्र शुरू होंगे। प्रधान एवं वित्त मंत्री अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 को दूसरी पढ़त पर प्रस्तुत करेंगे। सांसद, मंत्री और जूनियर मंत्री बजट में मुख्तलिफ मंत्रालयों और विभाग के लिए घोषित कदमों पर बहसें करेंगे। गैर सरकारी संगठन मुनाद चैरिटी ने बजट 2026-2027 में शिक्षा, सामाजिक अखंडता और पढ़ाई में मुश्किलों का सामना कर रहे या खास जरूरतें पढ़ने वाले बच्चों की मदद के लिए घोषित कदमों पर तसल्ली जताई है। तंजीम के CEO सैमुअल कोयापेन के मुताबिक ये ऐलानात एक अहम कटिबद्धता दर्शाते हैं जो मॉरिशस की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए है। लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित एक नई मौत दर्ज हुई है। स्टैनली रुजिल की 77 वर्षीय महिला नहीं बच सकी। 16 जून को कॉन्डस के विक्टोरिया अस्पताल में उनकी भर्ती की गई थी और सूत्रों के मुताबिक बागबानी के दौरान उन्हें ये बीमारी लगी होगी। अब तक लेप्टोस्पायरोसिस के 27 मामले दर्ज हो चुके हैं और कुल 7 लोगों की मौत हुई है। और विदेश में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर केयर स्टार्मर के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा दबाव है। उनके इस्तीफे के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। पिछले हफ्ते में कफील्ड के बाई इलेक्शन में एंडी बर्नाम की जीत के बाद लेबर पार्टी के लीडरशिप को लेकर उनके लिए एक नई चुनौती पैदा हो गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग

0: हम तो बिल्कुल अच्छा है।
1: नमस्ते बोंजू जू जू गुड मॉर्निंग वणकम बेबी हाउ आर यू।
0: देखा भैया हम तो बहुत ही अच्छा है, हमने आशा करत है कि तू हूँ अच्छा हवा। हमने के साथ देवत हवा 9:18 सोमवार के दिन है। आज लंदी के दिन सब कोई के बहुत बहुत प्यार भरा नमस्ते प्रणाम सब कोई के। हमने तनी सुन माफी मांगा था ऐसा कहे कि हमने के प्रोग्राम जन बातें तनी देर से शुरू हुआ था, पर जहां से हमने के साथ देवत हुआ आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबन लोगन के स्वागत बाटी। देखा सर्दी के जो मौसम बाते वो तो चलाल बाटी और वो आजकल बहुत ही ठंडा हुआ था, पर सर्दी के मौसम में जब हमने खेती बाड़ी के बात करी लाजा गार्डनिंग हमने करी लाजा और सर्दी के मौसम में इतना अच्छा अच्छा जो सब्जी सब मिलेला सुसू मिलेला भाजी मिलेला ढेर चीज मिलेला, तो जब हमने खेती बाड़ी करत है जा गार्डनिंग विशेषकर खेती बाड़ी तक कई जना करेला लेकिन गार्डनिंग जो बातें वो बहुत ही आसान है, आसान नहीं बोलब पर मेहनत के जो काम है और जो काम मेहनत से करबा ओकर फल मिलेला। तो ऐसा मौसम में सर्दी के मौसम में जब गार्डनिंग करत हवा तो कौन कौन प्रकोशो चाहे ला लेवे कि चल आज तनि सुन ई पर हमने चर्चा करब जा जहाँ से भी हमने के साथ देवत हवा जब हमने सर्दी के मौसम की बात करत है जाता। हाँ सबसे आगे जो बात है चाहेला निमन कपड़ा पहने के, जी हाँ गर्म कपड़ा चाहेला पहने के और वो ऐसा कपड़ा जन से कहे कि ऐसा मौसम में बारिश आवेला पानी बरसेला और वो कबो कबो घमा होला फजीर के ठंडा रात के ठंडा दिन में तनि सुन गर्म लगेला। तो ऐसे में ढेर जना अभी मरात हुआ था वनजा तनि सुन सर्दी खांसी सब हुआ था, तो बस अपन ख्याल रखिया तू हो सकेला अभी तुहर खेत में हवा अपन खेत में काम करत हुआ तो हमने के साथ दिया जा 402-8085-4028-08 पर जे कुछ शेयर करे के बाद तुहर जन गार्डनिंग तू करत हुआ खेती बाड़ी करत हुआ तुहर लगे मौसम कैसे बाटे अभी और कौन कौन प्रिकॉशन लेवेला तो हमने के साथ निभाते रहिया।

बहुत ही झूली गीत रहल आशीष रामफल के मधुर आवाज में सुहाना सफर बातें चला। आज की चर्चा अभी अभी सुनत हुआ 10 बजे लेक और हमनी के जितना जना सुनत हुआ जा फिर से आप सब लोगन के प्रणाम स्वागत बाटे। और जब हमनी सर्दी के मौसम की बात करत है जा तो सर्दी के मौसम जो बातें बहुत ही अच्छा लगेला, ठंडा ठंडा। और जब खेती बाड़ी करत हुआ तो ढेर फायदा उस सब बाटे। जी हाँ, सर्दी के मौसम में जब खेती बाड़ी करत हुआ तो वो चाहेला जाने के महत्वपूर्ण बात है कि ये दौरान जन बातें जन फसलें वो सब बातें निमन से उगेलन जा और वो जन हमनी के किसान हवन जा खेतिहर हवन जा लोग के बेहतर उत्पादन मिलेला। और उस सर्दी के मौसम में खेती बाड़ी के काफ़ी जन मुख्य फायदे ई प्रकार है, माने कि जन फसल बाते वो बेहतर बेहतर वृद्धि होला उ लोग में। माने कि ठंडा मौसम में गेहूँ जन बाते अभी हम नहीं लगे गेहूँ तो नहीं बाते, लेकिन मटर सरसों चना इस ढेर सब्जी जैसे अभी शुशु के बात कर रहे रही जा भाजी ढेर चीज मिलेला। और ई जन पेड़ पौधा वो सब हवन जा उ लोग के वृद्धि संतुलित और स्वस्थ रहेला। साथ ही साथ सर्दी में जन हानिकारक कीट हवन रोग हवन वो लोग कम सक्रिय हो जालन सा। हाँ हमने

ढेर बतियाली जा कि ढेर कीटाणु बाटे बैक्टेरी बाटे ऐसे उ सब बातें हमने देखा था जा होते रहेला और चाहेला प्रिकॉशन लेवे के और कौन प्रकार के जोन जोन फर्टिलाइजर इस्तेमाल करे थे वह पेस्टिसाइड बोलल जाला जब कोनो कोनो सुविधा कोनो सोल्यूशन वे नहीं बा तभी आप अपन जोन रासायनिक पदार्थ सकबा जा इस्तेमाल करे कहे कि आजकल तो जोन पियो फर्टिलाइजर बाते बियो पेस्टिसाइड बाते तो ढेर चीज बा जोन से तू अपन पैदावार के सकबा जा निमन बढ़ाए और इस सब के इस्तेमाल से कौन कौन फसल के कम नुकसान होला और कौन कौन दवाई पर खर्च चाहेला कम दी करे के इस सब पर हमने ढेर बतियाई ली जा और जितना जना उ लोग करे लन जा काम त उ लोगो भी जाने लन जा कि चाहेला निमन से इस्तेमाल करे के और जोन ऊंच हनमी बात कर ले जा गुणवत्ता जी हाँ ऊंच गुणवत्ता के उपज सर्दी में जोन सब्जी सब अनाज अक्सर बेहतर स्वाद मिलेला उ लोग के रंग जोन बातें उ लोग के पोषण जोन गुण बातें उ लोग तैयार हो जाला और वो मेहनत करल बा तब मेहनत के फल हमेशा मिलेला। गर्मी की तुलना में सर्दी में जन खेत बाते कारो सब बाते काम करे होला अधिक सुविधाजनक होला और वो किसान जन बाते बिना अधिक थकान के लंबे अवधि तक वो लोग सक्यन सा काम करे।

0: हाय रुपया, हाय रुपया रुपया हाय रुपया, हाय रुपया रुपया हाय रुपया, हाय रुपया।
1: आज की चर्चा।

बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतालोगन। 9:36 हो गलबाती हमने संगीत जुड़ल हुआ आज की चर्चा कार्यक्रम में। तो चला खेती बाड़ी के बहुत से फायदा बाती यार बात हो रहा। हमने जब छोटा रैली सा लेकुल में पाठशाला में हमने एक गो गांची तर रोपत रैली जा। हाँ आजो चाहेला जितना तू सकबा अपन घरे अपन आंगन अपन गाँव अपन शहर अपन देश के हमने सुरक्षित बनाए ला जा, अपन पर्यावरण के हमने सुरक्षित बनाए ला जा। और एक गो गांची रोपबा एक गो प्लांट एक गो फूल कुछ हो रही माने कि हमनी के पर्यावरण के ओकर भलाई होय और ओकर संगे हमनी के आवत जुन जनगाशो आवता उ लोगों के हमनी सुखद रह कबसा और स्वस्थ और सुरक्षित। तब जब हमनी खेती बाड़ी के बात कर रहे थे जा मनबा की एक ढेर फायदा बाती खेती बाड़ी खाली रोजी रोटी के जुन बातें हमनी साधन बोली ला जा ई नए है बकेर प्रकृति के साथ लानाचुअ के साथ जुड़ा रही ला जा। और एगो सुंदर तरीका भी है कि हमनी के ताज़ा और पौष्टिक जुन बाती भोजन मिलेला फूल मिलेला सब्जी मिलेला अनाज मिलेला और ढेर जना पशुपालन भी करे लंजा तो ई सब से हमनी के गुजारा होला। हाँ पर हमनी सब प्रकृति संगे और जुड़ल रही ला जा और ताज़ा जुन सब्जी बाती फल बाती अनाज उ सब मिलते रहेला जुन से हमनी के सेहत के खातिर बहुते लाभदायक रहेला। साथ ही साथ जुन आर्थिक लाभ होला खेती जुन बाते किसानों जन खेतीहर हवन जो उन लोग के आय के मुख्य स्रोत बाते और सही फसल और अच्छा जन योजना से प्लानिंग जन हमने करी ला जा ओकर से अच्छा मुनाफा होला कमाई जा सकेला। साथ ही साथ रोजगार का सृजन भी होला एकर से मतलब कि खेती और एकर से जुड़ल जन क्षेत्र बाते एकर में जन लाखों लोग उन लोग के रोजगार मिलेला और शारीरिक स्वस्थ हमनी बोली ला जा। जब हमनी खेती बाड़ी करी ला जा कुछ हमनी करी ला जा माटी संगे जुड़ल रही ला जा तो हमनी सेहतमंद रही ला जा और तनी सन कसरत हो जाला तनी सुन हमनी प्योसे करत है जा माटी सब तनी सुन काम करत है जा कुछो करबा ओकर से हमनी के फायदा होला और हमनी के जन शरीर बाते उ सक्रिय रह जाला और व्यायाम भी हो जाला और हमनी के तंदुरुस्ती बनाई रहेला।

0: ए प्रिकॉशन नहीं लेबा तो नुकसान सकेला होय त ऐसन जो न काम करत हुआ खेती बारी करत हुआ हबी जैसे बोली ओकर से हमनी के जो न स्वास्थ्य बातें वो बेहतर रहेला शारीरिक जो तंदुरुस्ती आवेला वो सबसे जरूरी बातें साथ में जो मानसिक शांति मिलेला प्रकृति के बीच हमनी के समय बितावे के मिलेला और तनाव जो बातें स्ट्रेस के हमनी आजकल ई दुनिया में हमनी जियत हैं जा तो तनी सुन मानसिक शांति पाए खातिर अपन परिवार अपन संगत या अपन लैका लोग संगे काके लगवन लोग भी फचके उजालन जा तो तनी सुन समय निकल बा तुहर घरे गो छोटा सन आंगन बाते तनी सुन जगह बाते जगह नहीं बाते कंटेनर जो प्रोताशो सकबा जा करे कंटेनर गार्डनिंग और कुछ हो रही कुछ हो जन फिंजे बाते आजकल हमने देखा था जा कितना जमाना बदलते जात बाते और लेता नहीं मिलेला तो तनी सुन कुतुमिली तनी सुन पुदीना तनी सुन जीप जितवा जीप चिपवा जोन बातें जीते कुछ हो रही हमने सके सकब सब बोले सकब सब रुपाई करे और तोहरा जब जब जरूरत पड़ी यहाँ पर ना कुछ इनमें इस्तेमाल करे के रसोई में हमने के मिल जाला साथ ही साथ हमने जैसे बोली जा जोन पर्यावरण के रक्षा हो जाला जोन पेड़ पौधा बातें गाँची उस सब बातें जोन फसल उस सब बातें वो हमने के हवा के शुद्ध बनावेलन और जोन पर्यावरण वो संतुलित हो जाला तो जब पर्यावरण संतुलित होला तो हमनियों के जिंदगी बातें वो आबाद हो जाला और हमनी बात करी ला जा आत्मनिर्भरता जी हाँ सेल्फ सफिशिएंट बोली ला जा ना ऑटोसफिशिएंट तो खेती व्यक्ति जोन बातें और एगो देश के दोनों के खड़ा यानी कि खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनावेला तो चला जितना हो सके कमती हो ढेर हो कितना मात्रा में हो हमने के चाहेला पैदावार करे के रुपाई करे के जमी हमनियों के मिल जाए खाए के और वो हमने के नए परी बाहर से मंगाए के
1: आज की चर्चा।

0: हमनी के जन श्रोता हवन हमी संगे जुड़ल हवन चला हमनी देखी ला जाके हवन हेलो
1: नमस्कार नीतू जी
0: धानी जी कैसे हवा नमस्कार कैसे हवा
1: नमस्कार नमस्कार मैं ठीक हूँ आप अच्छे ना
0: हम बा बिल्कुल अच्छा हाय और परिवार सब ठीक बाटे तोहर लगे अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद हमनी संगे जुड़ल हवा आज हमनी बता था जा कि अभी जो सर्दीवा के मौसम में बाटे ना खेती बाड़ी जब करेला हमने जानी ला जब वाशरी के जो नौवा बा ठंडा ठंडा हो जा परी चाय सब मिलेला तो तनी सुन तू खेती बाड़ी करेला
1: हाँ थोड़ा तो अतिला
0: घर ये
1: खेत नहीं जाएगा
0: जी घर ये
1: घर ही घर लगे थोड़ा प्लांट दिला
0: जी कौन सी प्लांट दिला हाँ
1: बना प्लांट है और मान्योक मान्योक प्लांट दिले हैं व्योलेट तनी तनी और ऐसे अदरक प्लांट ले आई अदरक
0: मामा ये सब जन चीज बोला था वो अदरक को सब
1: और
0: जब
1: जस्ती रहेला
0: हाँ
1: अपने खाती प्लांट ले हैं जब जस्ती होला तो
0: अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा बार बातें कहे कि हमने बनान जोन बातें भर्ती बारिश सब मिलते रहेला अभी जब बोले थे वह जजाम जजाम तनी सुन 8-9 महीना वो लग जाला और तुहर लगे ढेर चीज भाई अच्छा बात बा तनी सुन तंदुरुस्ती हो जैसे हमने बोला था जा
1: और एक महीना में ऐसे तब कबारे के पड़ी
0: जी जी जी
1: और एक महीना में तब अभी जुआ गलबा
0: हाँ
1: और एक महीना में तब ओकर गौछा सूख जाए
0: सूख जाए तब पारे हो जाए तब गर्मा गर्म अदरक वाली जो चाय बात है वो पिया सबके पियाया
1: नीतू जी कुछ बोले नहीं रेडियो पर नहीं अच्छा हुआ
0: अच्छा कोई बात नहीं था अपन जो बातें तू शेयर कर ले हवा और धनी जी हमने के बतावा जब तू खेती बाड़ी करत हवा तो हमने बोल ली जा कि जब खेती

0: बारी सब करेला तो तनि सुन तंदुरुस्ती आवेला हाथ गोर अच्छा रहेला अच्छा लगेला ना
1: अवश्य हां जाब अभी जाब हो जा खेतवा में जाब
0: तो चला तोरा बो कुराज हमनी बोलब और वो ऐसने अपन तंदुरुस्ती स्वास्थ्य के बारे में सोचा
1: एक घंटा लिए ऐसे चाहला कुछ करेगी
0: जी चाहेला ई सच्ची बात है तो चला स्वस्थ रहिया और ऐसने ही अपन लैका संगे फैका संगे छोटा लैका जन बाटे लोगों के सिखाइया कि कौन चीज है जब हमनी गार्डनिंग तनि सुन खेती बारी सब करीला यो कर फायदा कौन चीज है ठीक बा
1: करेलन सर और हमर नाती लोग अच्छा होन
0: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद हनी जी
1: धन्यवाद
0: शुभ दिन त देखला श्रोताओ धनी जी अपन कारो में तो नहीं हाँ अपन घर ये तनि सुन प्रोताशो सब करेन बनान के प्रोताशो करेन मिल जाला अभी जजम जुआ जाए त बस कबारे के बखत हो जाए तोहरो मिल जाए और ऐसने जोन चीज प्लान बा फूल होए फल होए सब्जी होए जोन चीज रही प्लान बा तनि सुन त अच्छा रहेला

भोजपुरी हमनी के धरोहर हा और उचाहे लायक रहा हमेशा से जीवित रखे के और हमनी सत सत प्रणाम करी ला जापन जिन जितना हमनी के पूर्वज आ रहलन जा हमनी के भाषा के संजो के रखले हवन आज हो हमनी के भोजपुरी भाषा जिन बातें कहाँ से कहाँ पहुँच गल बातें तो जितना जना हमनी के सुनले हवन बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर्दी के मौसम बाटे अपन ख्याल रखिया और जितना किसान हवन जा लोग के लिए जिन प्रकृति एगो अनमोल उपहार है और सही योजना से मेहनत से ओकर फल मिले ला तोहरा और एकर दौरान केयर गल जिन पैदावार बातें खेती बाड़ी बातें वो अधिक उपज रहेला बेहतर गुणवत्ता मिलेला और अच्छा से आमदनी के रास्ता खोले सकबा जा। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बजे मिलब जा संक्षिप्त समाचार के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में।

0: आई मिलते हैं सुमेरा से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आदाब आपको सुमेरा।
1: नमस्कार आदाब। पेंशन प्रणाली में सुधार लाया जा रहा है। माहिरों के आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर रखा गया। अब बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू होगा। वृद्ध पेंशन के लिए जो लोग योग्य होंगे उन्हें 60 साल से 70 साल के बीच पेंशन पाने का फैसला लेना होगा। लाभार्थियों को पहचानने के लिए एक मींस टेस्ट किया जाएगा। मुर्शिदाबाद कांग्रेस पेंशन में सुधार के फैसले से खुश नहीं है। श्रमिक संघ ने इसे नाइंसाफी करार दी। एक विज्ञप्ति में अध्यक्ष हनीफ पिहान ने कहा कि नई पेंशन

शिक्षण प्रणाली से एक सामाजिक बुनियाद पर असर हो रहा है, बहुत से बुजुर्गों पर प्रभाव पड़ेगा। इस सुधार पर MLC ने बड़ी चिंता जाहिर की क्योंकि ये कदम अवाम की भलाई और फायदों से बहुत अलग है। बजट 2026-2027 की पेशकश के बाद आज राष्ट्रीय सभा में बहस सत्र शुरू होंगे। प्रधान एवं वित्त मंत्री अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 को दूसरी परत पर प्रस्तुत करेंगे। सांसद, मंत्री और जूनियर मंत्री बजट में मुख्तलिफ मंत्रालयों और विभागों के लिए घोषित कदमों पर सवाल करेंगे। लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित एक नई मौत दर्ज हुई है। स्टैनली रुजिल की 77 वर्षीय महिला नहीं बच सकी। 16 जून को कॉन्डस के विक्टोरिया अस्पताल में उनकी भर्ती की गई। सूत्रों के मुताबिक बागबानी के दौरान उन्हें ये बीमारी लगी होगी। अब तक लेप्टोस्पायरोसिस के 27 मामले दर्ज हो चुके हैं और कुल 7 लोगों की मौत हुई। अधिकारी सभी तरह की सावधानी बरतने की मांग कर रहे हैं, खासतौर पर बागबानी या बाहर के काम करते हुए पानी या कीचड़ से। दस्ताने, अच्छे जूते पहनने का मशवरा दिया जा रहा है। बुखार, बदन में दर्द या बेआरामी होने पर डॉक्टर से फौरन मुआयना करवाने की मांग की जा रही है। प्रदेश में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी को आखिरी रूप देने के लिए बातचीत जारी है। स्विट्जरलैंड में उच्च सतह वाला सत्र लग रहा है। पिछले हफ्ते दोनों मुल्कों ने अमन कायम करने के मकसद से आपस में समझौता तय करने पर रजामंदी जताई थी। वो भी 60 दिनों के अंदर बातचीत कुछ धुंधली शर्तों पर स्पष्टीकरण लाने के लिए की जा रही है, खासतौर पर अब नए हुर्मुज को दोबारा खोलने के सिलसिले में। दक्षिणी लिबनान में हमलों को भी बंद करने की शर्त है और परमाणु समझौते के भी पहलू शामिल हैं। फुटबॉल में आज यूरुग्वे और काबू वेद के बीच मैच खेला गया, जो ड्रॉ गया। स्कोर रहा 2-2 और इजिप्ट ने न्यूजीलैंड को जबरदस्त शिकस्त दी। स्कोर रहा 3-1। आज रात 9 बजे अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। पेटी शुमें बेले रिवियर सेश में 62 साल के 62 years old श्री हरिदेव तेंबा जो बाबुल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह तीन बजे इनकी पत्नी रेशमीबाई तेंबा के घर पेटी शुमें बेले रिवियर सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। स्वदेश लेन वाली दे प्रथ में 80 साल के 80 years old श्री गौकरण मानिक जो जगदीश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दोपहर के दो बजे इनके बेटे भनंजय मानिक के घर स्वदेश लेन वालिदे प्रत्र से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामोशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

10:04 हो रहे हैं। श्रोताओं, स्वीकार करें नीतूषा का करजोर प्रणाम। जी हाँ, भक्ति धारा कार्यक्रम में आप सबका अभिवादन स्वागत करते हैं दिन के 11 बजे तक। जहाँ से भी आप हमारे हम सफर बने हुए हैं, आइए श्री गणेश करते हैं।

रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबको सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, हम रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 252 के नीचे की चौपाइयों को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रसंग आपको याद होगा, धनुर्यज्ञ का प्रसंग है। एक से एक पराक्रमी राजा, देवतागण और यहां तक कि दैत्यगण भी मनुष्य रूप में धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह करने की इच्छा लेकर जनकपुरी में उपस्थित हुए हैं और सबने एक एक करके धनुष को उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका। राजा जनक ये देख करके अत्यंत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा प्रण पूरा नहीं होगा और मेरी पुत्री अविवाहित रह जाएगी। एक श्रेष्ठ पुरुष होने के नाते, एक अच्छे राजा होने के नाते मैं अपने प्रण से विमुख भी नहीं हो सकता और अपनी पुत्री को आजीवन अविवाहिता भी नहीं देख सकता। मैं करूं तो क्या करूं? बहुत ही दुखी है राजा जनक और इसीलिए क्रोध में, निराशा में, दुख में वे एक बात कहते हैं कि लगता है ये धरती वीरों से विहीन हो गई है, इस धरती पर कोई वीर बचा ही नहीं है। यदि मुझे ये सत्य ज्ञात होता पहले से तो मैं इतना बड़ा प्रण कभी करता ही नहीं। और उनकी ये बात सुन करके लक्ष्मण जी का क्रोध मानो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। वे ये सहन नहीं कर पाते कि श्री राम की उपस्थिति में राजा जनक इतने

बड़ी बात कैसे कह रहे हैं, उन्होंने ये कैसे कह दिया कि धरती पर कोई वीर बचा ही नहीं, अभी तो श्री राम ने अपना पराक्रम दिखाया ही नहीं है। लक्ष्मण जी की रोषपूर्ण मुद्रा इस बात को प्रमाणित करती है कि जहाँ भी मर्यादा का हनन होता है वहाँ वीर पुरुष शांत नहीं रह सकता और वह पलायन भी नहीं कर सकता। इसीलिए लक्ष्मण जी बिल्कुल आग बबूला हो उठे और उनके अंदर क्रोध की आग तो सुलग रही है लेकिन दूसरी ओर श्री राम की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वे अपने क्रोध को अभिव्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण जी बीच का रास्ता निकालते हैं, वे श्री राम का सम्मान भी करते हैं और अपनी बात भी कहते हैं। जनक जी के वचन उन्हें बाण जैसे लगते हैं और चोट खाकर चुप रहना ये कायरता भी है और वीरता भी। जब कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति चुप रहे तो वह सबल और वंदनीय माना जाता है, लेकिन जब दुर्बल व्यक्ति चुप रहता है, शांत रहता है, तो लोग उसे कायर मानते हैं और उसके व्यवहार को निंदनीय मानते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी श्री राम के चरण कमलों में नमन करते हैं और यथार्थ वचन बोलते हैं, यानी जो उनके हृदय में है वही बात वो बोलने जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी की वाणी में विनम्रता भी है और वे जो कहने जा रहे हैं उसमें सत्यता भी है। और क्या कहते हैं वे कि रघु बंसिन मह जहु कोई होई, ते ही समाज अस कह न कोई, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई जहां भी होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम की उपस्थिति जानते हुए भी राजा जनक ने कहे हैं। श्रोताओ, मनुष्य सबसे पहले अपने कुल से, अपने परिवार से जाना जाता है। लक्ष्मण जी वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को, हर राजा को और यहाँ तक कि राजा जनक को भी ये स्मरण कराना चाहते हैं कि रघुकुल शिरोमणि श्री राम जहाँ हों वहाँ मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है। किसी नारी के प्रति अपमानजनक बातें नहीं कही जानी चाहिए। मनवाना व्यवहार और मनमानी वाणी दोनों ही श्री राम की प्रतिष्ठा के विरुद्ध हैं। पहले श्री राम को पराक्रम प्रदर्शित करने का अवसर मिलना चाहिए और अगर वे असफल हो जाएं तब ऐसे अनुचित वचन बोले जाने चाहिए। रघुवंश की यथार्थ शक्ति का लक्ष्मण जी बखान करने जा रहे हैं और उसे बड़बोलापन न समझ लिया जाए इससे बचने के लिए वे एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहाँ सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ कुछ अभिमान करके नहीं, आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। लक्ष्मण जी क्रोध में हैं लेकिन मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। राजा जनक की निराशा और श्री राम जैसे पराक्रमी वीर को मर्माहत करने वाले वचनों को सुनकर वे शांत नहीं रह पाते, लेकिन उत्तर देते समय वे राजा जनक को नहीं बल्कि श्री राम को संबोधित करते हैं, क्योंकि राजा जनक बहुत बड़े हैं और श्री लक्ष्मण राजा जनक के यहाँ अतिथि बन करके आए हैं। वे उनका अपमान नहीं करना चाहते, वे राजा जनक के मन की पीड़ा को, उनके दुख को, उनकी निराशा को समझ रहे हैं। इसलिए वे राजा जनक का अपमान भी ना हो और वे अपनी बात भी कह लें, इसके लिए क्या रास्ता चुनते हैं कि वो संबोधित करते हैं श्री राम को, मानो वे अपनी बात श्री राम को कह रहे हैं। और यदि श्री राम को कह रहे हैं तो वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति उनकी बात को सुनेगा भी, समझेगा भी। लक्ष्मण जी का तात्पर्य ये

है कि श्री राम से छोटा और पराक्रम और गुणों में उनसे हीन होने पर भी यदि मैं धनुष तोड़ सकता हूँ तो श्री राम के पराक्रम और प्रताप का तो कहना ही क्या। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, यदि हे राम जी मुझे आप आज्ञा दे दें तो मैं ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को, इस धनुष की तो बात ही छोड़ दीजिए, इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। जैसे बच्चे बड़ी आसानी से छोटा सा गेंद अपने हाथ में उठा के खेलते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए गेंद की तरह होगा, इस धनुष की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतना गुरु गंभीर वचन लक्ष्मण जी रघुवंश के पराक्रम के व्यवहारिक प्रदर्शन के लिए बोल रहे हैं। और वे कहते हैं कि पराक्रम हमारा स्वभाव है, अभिमान नहीं, मैं अभिमान के कारण नहीं बोल रहा हूँ, मैं बड़बोला नहीं हूँ कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, अंदर से कुछ खोखला हूँ और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, हमारा तो स्वभाव ही है पराक्रम, इसलिए मैं किसी अहंकार के कारण नहीं कह रहा हूँ। स्वभाव में मनुष्य सदैव एक सा रहता है और अभिमान में उतार चढ़ाव आता है, स्वभाव की स्थिरता ही मनुष्य के आचरण को गरिमा देती है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि इतना ही नहीं, मैं क्या करूँगा, काचे घट जिमिदारों फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिमितोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। उसे कच्चे घड़े की तरह मैं फोड़ डालूँ, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह मैं तोड़ सकता हूँ, हे भगवान आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो क्या चीज़ है। लक्ष्मण जी अपनी वीरता की बात बता रहे हैं, वो सबको बताना चाहते हैं कि हम रघुवंशी कितने पराक्रमी हैं, कितने वीर हैं, और हम असंभव को भी संभव करना जानते हैं क्योंकि वीरता हमारा स्वभाव है। इसलिए एक बात उन्होंने पहले कही कि ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा सकता हूँ, और यहाँ कह रहे हैं काचे घट जिमिदारों फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिमितोरी। ये धनुष कैसा है मेरे लिए, कच्चे घड़े की तरह है। कच्चा घड़ा यानी अभी उसको हवा में डाल के, आग में डाल के पकाया नहीं गया है, अभी तो बस मिट्टी का बना हुआ घड़ा है, एकदम पोला, एकदम मुलायम, जैसे उसे एक बच्चा भी तोड़ सकता है आसानी से, उसी तरह ये धनुष मेरे लिए एक कच्चे घड़े की तरह है, जिसे मैं छूँ तो वो टूट जाए, और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। बोल रहे हैं कि सुमेरु पर्वत, अब सोच के देखिए कहाँ पर्वत, सुमेरु पर्वत, अब पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत है सुमेरु पर्वत, बोल रहे हैं उसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, मूली की तरह। मूली, हम जिस मूली को खाते हैं, जिसे हम राव कहते हैं, उसे यूं हाथ से हम तोड़ देते हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, तो भला ये पुराना बेचारा सा धनुष ये कौन सी बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये जो शिव जी का धनुष है ये तो बहुत पुराना है। तो हे राम जी आपके प्रताप की महिमा से, लक्ष्मण जी कितनी महिमा, कितनी प्रभुता दे रहे हैं, कितना गौरव दे रहे हैं राम जी को, कह रहे हैं कि आपका प्रताप ऐसा है कि उस प्रताप के कारण, अब मेरा कोई भी सामर्थ नहीं है, मैं अपने बलबूते पे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके प्रताप के कारण ये बात कह पा रहा हूँ कि इन असंभव कार्यों को मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ, कि ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूँ, तो ये बातें असंभव हैं लेकिन मैं कर सकता हूँ क्योंकि आपका प्रताप ऐसा है, आपकी महिमा ऐसी है। फिर वो आगे कहते हैं नाथ जानी अस आयस हो, कौतुक करों बिलो कियसो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो मैं कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए।

धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। अभी भी लक्ष्मण जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कितनी सारी असंभव बातें उन्होंने बता दी कि धनुष को, जो जिस धनुष को इतने बड़े बड़े राजा उठा नहीं पाए, उसको वो बोल रहे हैं कि मैं कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, हाथ लगाऊं तो टूट जाए। सुमेरु पर्वत को मैं उठा सकता हूं तो ये धनुष क्या चीज़ है। मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूं तो ये धनुष क्या चीज़ है। और फिर कह रहे हैं कि यदि आप मुझे आज्ञा तो दे के देखिए, एक बार आप संकेत कर दो कि हे लक्ष्मण चलो जाओ तुम धनुष उठाओ, तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ खेल कर दूँ। क्या खेल करूँ? खेल का मतलब मैं तमाशा करूँ यहाँ, जैसे कोई तमाशा किया जाता है मनोरंजन के लिए, तो मैं भी यहाँ एक मनोरंजन के लिए तमाशा करूँ। क्या करूँ? कि इस धनुष को कमल की नाल की तरह उठा लूँ। कमल की नाल, आप जानते हैं कमल का फूल, और उस कमल का फूल जिस पतली सी डंडी पर टिका होता है उसे हम नाल कहते हैं, यानी कमल की डंडी। तो बोल रहे हैं जैसे कमल की डंडी एकदम कोमल होती है, हाथ लगाओ तो लगता है टूट जाएगी, उतना मेरे लिए ये धनुष उतना ही कोमल है जैसे कमल की नाल, कमल की डंडी। तो मैं उसे उसी तरह उठा लूँ कमल की नाल की तरह, और तब 100 योजन तक यानी 400 मील तक मैं दौड़ता रहूँ। लोग उठा नहीं पा रहे हैं, टच से मस नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो उठा के दौड़ता रह सकता हूँ दिन रात, लेकिन आप मुझे आज्ञा तो दें, तब तो मैं ये करके दिखाऊं, तब तो राजा जनक की निराशा को दूर करूं। तोरों छड़क दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपत करण धरो धनुभात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ सकता हूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। कितने सारे उदाहरण अपनी वीरता के लक्ष्मण जी दे रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी को लग रहा था इतने इतने बड़े राजा आए आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है, सबके सब बिल्कुल व्यर्थ हैं, अपने पराक्रम की निंदा कराने के लिए यहाँ आए हैं, और उसके बाद राजा जनक हम सबको ललकार रहे हैं, अभी तो ना मैंने कोशिश की ना राम जी ने कोशिश की, और उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। इसलिए लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोध में हैं और कह रहे हैं कि हे राम जी, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो आपके प्रताप के बल से मैं इस धनुष को कैसे उठा लूँ, कैसे तोड़ दूँ, जैसे कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता ये जो जिसे बरसात के दिनों में वो छोटे छोटे से सफ़ेद सफ़ेद अपने आप उग आते हैं घास में, तो उसे हम कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो बोल रहे हैं जैसे उसे तो कोई भी ऐसे भी करो, हाथ भी लगाओ तो वो टूट जाता है, तो मैं बिल्कुल उसी तरह से यानी बड़े सहज ढंग से बिना किसी प्रयास के अनायास ही इस धनुष को मैं तोड़ सकता हूँ। और हे राम जी, यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो आपके चरणों की मैं शपथ खा रहा हूँ, आपके चरणों की सौगंध खा रहा हूं कि फिर मैं जीवन में कभी धनुष और तरकस को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तब मैं अपने को वीर नहीं मानूंगा। लखन सकूप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सियही हरष जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग और सब राजा डर गए, सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। बोल रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने जब इतने कठोर वचन क्रोध से भरे हुए बोले तो पृथ्वी डगमगा उठी। क्यों पृथ्वी डगमगा उठी? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं और पृथ्वी शेषनाग पर टिकी हुई है, तो इसलिए जब उन्हें क्रोध आता है और वो इतना क्रोध में आकर के ऐसे वचन बोल रहे हैं तो लगता है कि पृथ्वी भी डगमगा गई है और

दिशाओं के हाथी कांप उठे, मतलब हमारे यहाँ जो 10 दिशाएं मानी गई हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इन चारों दिशाओं के चार कोण, नीचे पृथ्वी और ऊपर आकाश, इस प्रकार 10 दिशाएं मानी गई हैं। और ये भी माना गया है कि सभी दिशाओं में हाथी हैं जो इन दिशाओं के स्वामी हैं, इन दिशाओं को थामे हुए हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचनों को सुन करके वो क्रोध केवल शब्दों से नहीं अभिव्यक्त हो रहा था, उनके पूरे शरीर से, उनकी वाणी से, उनके नेत्रों से, उनके नथुनों से, उनके भौहों से, हर चीज़ से, अंग अंग से वो क्रोध जब प्रकट हो रहा है तो उसे देख करके पृथ्वी डगमग होने लगती है। लगता है कि अब पृथ्वी का जो संतुलन है वो समाप्त हो जाएगा। दिशाओं के हाथी मानो चिंघाड़ने लगे, कांपने लगे कि अब क्या होगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आने का मतलब है कि पूरी सृष्टि में प्रलय मच जाएगा। और उनके इस क्रोध को देखकर सभी उपस्थित राजा डर गए कि ये क्या हो रहा है। किसी ने आशा नहीं की थी कि इतने बाल राजकुमार, बाल राजकुमार यानी अभी बिल्कुल नवयुवक हैं, और इतना उनमें क्रोध, इतना पराक्रम, तो सब राजा डर गए। और सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ। सीता जी को क्यों हर्ष हुआ? उन्हें लगा कि अभी कोई है जिसमें अपनी वीरता का गर्व है। और वो जानती हैं कि लक्ष्मण जी और राम जी एक साथ हैं। लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, उनका लक्ष्य तो राम जी हैं। इसलिए सीता जी अपने मन में बहुत प्रसन्न होती हैं। उनकी जो निराशा है वो धीरे धीरे आशा में परिणत हो रही है। लेकिन जनक जी को तो नहीं मालूम है कुछ, इसलिए जनक जी लज्जित हो रहे हैं, सकुचा रहे हैं कि अरे मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी और देखो लक्ष्मण कितने रुष्ट हो गए। सचमुच मुझे तो, मैं तो बहुत ही विवेकवान हूँ, धीर हूँ, गंभीर हूँ, मैं विदेह हूँ, मैं कभी भी अपना आपा नहीं खोता हूँ, आज मैंने ऐसा कैसे कर दिया। और ये सब सोच के राजा जनक भी संकुचित हो रहे हैं। और इस प्रकार ये जो प्रसंग है लक्ष्मण जी के क्रोध का, वो हम आगे आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे और देखेंगे कि कैसे लक्ष्मण जी का क्रोध शांत होता है और कैसे राम जी धनुष तोड़ते हैं। लेकिन ये सारी चर्चा अगले कार्यक्रम में। आइए एक भजन सुने और उसी के साथ आज के इस मानस मंथन को हम विराम दें। धन्यवाद। नमस्कार।

बजकर 46 मिनट हो रहे हैं श्रोताओं, और आज सोमवार का दिन, हर हर महादेव, आप सभी को बम बम भोले की कृपा, उनका आशीर्वाद आप सब पर रहे, यही कामना करते हैं। और जब भी आप पूजा करते हैं, भले ही कुछ हो ना हो, मात्र एक लोटा जल से आप शिव भगवान को उनके शिवलिंग पर चढ़ाकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी कुछ मांगते नहीं हैं, भगवान कुछ मांगते नहीं हैं हमसे, जो हमारी इच्छा शक्ति है वो ही हम करते हैं।

ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, हर हर महादेव कहते रहे और देखिएगा कि जीवन कितना साकार हो जाता है। श्रोताओं, आज का यह भक्ति धारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। नीतूषा को आज्ञा दीजिए। प्रणाम, शुभ दिन।

0: आइए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमेरा अली के साथ। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार आदाब। बजट 2026-2027 में ऐलान कुछ कदमों पर अगर रोशनी डालें तो कुछ पैदावारों पर टैक्स बना हुआ है। शराब और सिगरेट पर परसों से इनके दामों में 10% की बढ़ोतरी लाई गई है। वाइन और बिया के दामों को बरकरार रखा गया। इसके अलावा कुछ सामानों पर वैट को खारिज कर दिया गया है। मॉरिशस लेबर कांग्रेस पेंशन में सुधार के फैसले से खुश नहीं है। श्रमिक संघ ने इसे एक नाइंसाफी करार दी। एक विज्ञप्ति में अध्यक्ष अनिफ पीगन ने कहा कि नई पेंशन प्रणाली से एक सामाजिक बुनियाद पर असर हो रहा है, बहुत से बुजुर्गों पर प्रभाव पड़ेगा। इस सुधार पर MLC ने बड़ी चिंता जाहिर की क्योंकि ये कदम अवाम की भलाई और फायदों से बहुत अलग है। हालिया बजट में मैटरनिटी को लेकर जो बड़ी घोषणा की गई है उस पर बहुत संतुष्टि जताई जा रही है, लेकिन छोटे एवं मध्यम उद्योगों में राय अलग अलग है। बच्चे को जन्म देने के बाद मां को 6 महीनों का पेड लीव मिलता है और बाकी के 6 महीने उस पर निर्भर हैं कि वो लेना चाहेगी या नहीं, जिसकी आधी तनख्वाह प्राप्त की जाएगी जो मालिक पर मुनहसिर है। कंपनी मालिकों का यही फिक्र है कि किस तरह कर्मचारी को मैटरनिटी लीव के दौरान रिप्लेस किया जाएगा, वो भी कंपनी की गतिविधियां बरकरार रखकर अतिरिक्त दामों का सामना करते हुए। SME चैम्बर के मुताबिक 1 साल की मैटरनिटी लीव से कर्मचारियों के संचालन में दिक्कतें होंगी और उद्योगों का बोझ भी बढ़ जाएगा। विदेश में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी को आखिरी रूप देने के लिए बातचीत जारी।

0: हुई है। स्विट्जरलैंड में उच्च सतह वाला सत्र लग रहा है। पिछले हफ्ते दोनों मुल्कों ने अमन कायम करने के मकसद से आपस में समझौता तय करने पर रजामंदी जताई थी, वो भी 60 दिनों के अंदर अंदर। बातचीत कुछ धुंधली शर्तों पर स्पष्टीकरण लाने के लिए की जा रही है, खासतौर पर आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के सिलसिले में। दक्षिणी लेबनान में हमलों को भी बंद करने की शर्त है और परमाणु समझौते के भी पहलू शामिल हैं। फुटबॉल में आज यूरुग्वे और काबो वेर्द के बीच मैच खेला गया जो ड्रॉ गया। स्कोर रहा 2-2। इजिप्ट ने न्यूजीलैंड को जबरदस्त शिकस्त दी। स्कोर रहा 3-1। आज रात 9 बजे अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच मुकाबला होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो मॉरिशस। शम्मे फरोजा।
2: आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानि रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मौज़ सामईन, उम्मीद है आप फजल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, बयान और नातो सलाम। असल तब्दीली तो कुरान से ही आती है। ये कुरान ही है जो दिलों को बदल देता है, जो रवैयों को बदल देता है, जो शख्सियत को बदल देता है। हाँ, कुरान ही है जो जिंदगियों को बदल देता है। बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। तो आइए आगाज़ करते हैं कलामे इलाही से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

सदकल्लाजीम। ए पाक परवरदिगार हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा, आमीन। या रब, अजल से तू है, तेरी इब्तिदा नहीं, हर शय की इंतहा है, तेरी इंतहा नहीं। या रब्बे जुलजलाल, ए मौलाए कायनात, तेरी इनायतों की कोई इंतहा नहीं। दिन का भी या इलाही तेरे हुक्म के बग़ैर हिलता नहीं, हिलेगा नहीं और हिला नहीं। हो गुलसिता या बाग़ जिना या हो कुल जहां, है कौन तेरे नूर से जो पुरजिया नहीं। मौला मुझे तू बख्श दे बस उल्फत हबीब, है पास मेरे और कुछ इसके सिवा नहीं। कुरान की आयतों से ये जाहिर है या खुदा, तेरे हबीब का जो नहीं वो तेरा नहीं।

एक बहुत ही प्यारी रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की रज़ा उमर की रज़ा है और उमर की रज़ा अल्लाह पाक की रज़ा है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, हमने बयान की इब्तिदा में एक आयत करीमा सुनने की सआदत हासिल की। ये आयत करीमा हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अहम तरीन सबक देती है। और सबक क्या है और इस सबक के मुतालिक फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तय्यबा से हमें क्या रहनुमाई मिलती है, ये आज हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आइए पहले आयत करीमा को समझ लेते हैं। अल्लाह पाक ने फ़रमाया, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसं व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तो क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। ये बहुत गहरा सवाल है जो कुरान करीम हमसे पूछ रहा है। क्या समझते हो, तुम्हें बास पैदा किया गया। बास बहुत अहम लफ्ज़ है, इसके माने में गहराई है। इंग्लिश में भी इसके कई जो है वो मतलब हैं या कोई नाम है इसके, यानी कि कोई पर्पज़ किसी के लिए, किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए जो है इंसान को पैदा किया है या यूं ही पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ये सवाल फरमा रहा है, यानी हमारे घरों में बच्चे खेलते हैं, ये बास नहीं है। इसमें नशोनुमा का एक पहला पहलू मौजूद है, इसमें नशोनुमा का एक पहला पहलू मौजूद है। हम वर्जिश करते हैं, ये भी बास नहीं है, इसमें सेहतमंदी का पहलू मौजूद है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने गाड़ी निकाली, 5000 का पेट्रोल डाला और निकल पड़ा। गाड़ी चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा, यहाँ तक कि जब थक गया तो वापस घर आ गया, कुछ भी नहीं किया, ना कहीं रुका, ना कहीं पहुँचा, ना कुछ ख़रीदा, ना किसी से मिला, बस यूं ही बेवजह 5000 का पेट्रोल जलाकर वापस आ गया। ये बास है, यानी एक ऐसा सफ़र जिसकी कोई मंजिल नहीं, ऐसा काम जिसका कोई नतीजा ही नहीं, इसे बास कहेंगे। कुरान हमसे पूछ रहा है, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें बेकार बनाया गया, पैदा किया गया, बस तुम दुनिया में आए हो, जीते रहोगे, फिर मर जाओगे, मिट्टी में दफन हो जाओगे, फिर तुम्हारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। क्या तुमने पलट कर वापस नहीं आना, अल्लाह पाक के हुजूर अपने लम्हे लम्हे का जवाब नहीं देना। नहीं, ऐसा नहीं, इस कायनात में असल तुम एक इंसान ही तो हो, जिन्हें बामाना मखलूक बनाया गया, यानी कोई मकसद के तहत बनाया गया। ये सारी मखलूकात, ये पहाड़, ये हवा, ये दरख्त, ये चरिंद, ये परिंद, चांद, सूरज, सितारे, ये सब कुछ तो इंसान की खिदमत के लिए बनाया गया। असल मऊनियत इंसान के अंदर रखी गई, यानी उसका जो मतलब है, मकसद है, वो इंसान के अंदर है। गर्ज़ ये आयत करीमा हमें झुंझोड़ रही है कि तुम बेमकसद नहीं हो, तुम सिर्फ़ दुनिया में मज़ा करने के लिए नहीं आए हो, तुम सिर्फ़ दुनिया में घूमने फिरने के लिए नहीं आए हो, महज जीने के तौर पर जीते ना रहो। अब माँ बदौलत 25 साल के हो गए, अब 30वीं साल की राह आई, 30 साल के हो गए, अब 60 साल के हो गए, अब जनाब मर गए, ऐसे ना हो, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी बा मकसद है, इसे बा मकसद बनाकर ही गुजारना सीखो। यानी हमारे दुनिया में आने का, जीने का कोई मकसद है और हमें उसी मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। आज के दौर में तीन बड़े बहरान हैं जिनसे हमारी अक्सरियत, बिलखसूस नौजवान तबका, यानी नौजवान जो डिपार्टमेंट है, जो नौजवान हैं, उससे दो चार हैं, यानी परेशान हैं उसमें। नंबर एक, बेमकसदियत, कोई मकसद ही नहीं है उनका, उठे, खाया, पिया, सोए, घूमे फिरे, सोशल मीडिया देखा, फिर सो गए, फिर उठे, फिर यही लाइफ, नुमाइश की दौड़, यानी दिखलावा, मैं ये करूं तो लोग क्या कहेंगे, ये नहीं करता तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास अच्छा घर नहीं है तो लोग क्या कहेंगे,

अब इन लोगों के लिए, इन चीज़ों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आदमी हराम की तरफ भी जाता है, गुनाहों की तरफ भी जाता है, लोगों का दिल भी दुखाता है, लोगों के साथ फ्रॉड भी करता है, गुनाहों वाले काम भी करता है कि बस कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए, पैसा आ जाए कि मैं नुमाइश करूँ। तीसरा जो बहरान है वो ख़ुद फरामोशी है, अपना अपने आप को जो है भूल जाना, अपने आप को पियाजी कर देना। यही तीन बहरान हैं जो हमारी ज़िंदगी को बास कर देते हैं। आयत करीमा हमसे तकाजा करती है कि ये तीनों बातें हमारे अंदर ना हो ताकि हमारी ज़िंदगी बास यानी बेकार ना रहे। पहला बहरान बेमकसदियत, पर्पसलेसनेस उसको कहेंगे, पहला बहरान बेमकसदियत। दूसरे लफ्ज़ों में इसे कहते हैं यानी बेमकसद ज़िंदगी। आप किसी से भी पूछिए भाई क्या बनना है, उसका जवाब शायद आपको हर कोई दे देगा। कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई टीचर बनना चाहता हूँ, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ। दूसरा सवाल कीजिए क्यों बनना चाहते हो, इस क्यों का शायद कोई जवाब नहीं दे पाएगा। अभी बैठे बैठे दिल ही दिल में अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ, शायद हमारे पास इसका भी एक ही जवाब होगा कि हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अभी तशरीफ़ नहीं लाए इसलिए ज़िंदा हूँ, वो लेने आ जाएंगे तो मैं चला जाऊँगा। चोट करने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, वैसे तो वो जब तशरीफ़ लाएंगे हमें जाना ही पड़ेगा। बहरहाल हमारे पास ज़िंदगी में अमूमन कोई मिशन नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा मसला है। फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पाक की रोशनी में इसका हल देखिए। अभी फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इससे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। क्या दुआ की, ए अल्लाह पाक दो बंदे हैं, एक है अबू जहल दूसरा है उमर बिन ख़त्ताब, इन दोनों में से जो तेरा महबूब है इसके ज़रिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। अभी एक दिन भी नहीं गुज़रा था हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ एक तो ईमान अफरोज़ बात यह है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, या अल्लाह पाक इन दोनों में से जो तुझे महबूब है इसे ईमान की दौलत अता फरमा। इस दुआ के नतीजे में जब अबू जहल को रिजेक्ट कर दिया गया और हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु को ईमान की दौलत अता कर दी गई, तो ये लाजमी तौर पर साबित हो गया कि हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह पाक के महबूब बंदे हैं। दूसरे नंबर पर ये देखिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह पाक से क्यों मांगा, कोई मकसद, गलबा इस्लाम के लिए, ये पॉइंट है, ये वो मिशन है जिस पर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी ज़िंदगी खड़ी होती है। साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, यानी जिस लम्हे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया उस वक्त से हम मुसलसल गलबा ही पाते रहे, कभी एक लम्हा के लिए भी हम में कमज़ोरी नहीं आई। दूसरे साहबी हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया उस वक्त से इस्लाम की मिसाल ऐसे है जैसे कोई हमारी तरफ आ रहा हो, दिन ब दिन इस्लाम की क़ुव्वत बढ़ रही थी। जब आप शहीद हो गए अब इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई में नहीं बल्कि गलबे में कमी आना शुरू हो गया। अब इस्लाम ऐसे था जैसे कोई शख्स हमसे दूर जा रहा हो और वो हर कदम पर दूर ही दूर होता चला जाता है। आप देखिए हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में एक बड़ा मिशन था और आप इस मिशन के साथ जुड़े हुए कैसे थे। जब तक आप दुनिया में मौजूद रहे आपकी हर हर सांस इस्लाम को क़ुव्वत गलबा और तरक्की दे रही थी। अच्छा आपको क्या लगता है, जैसे हम बाज़ार से बल्ब ख़रीद कर घर लेकर आते हैं, बटन दबाते हैं और बल्ब रोशनी देने लग जाता है, क्या ये मामला भी ऐसे ही था कि माज़ल्ला हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु को लाकर मुसलमानों के बीच में खड़ा कर दिया तो इस्लाम को गलबा मिल गया, जूँ ही हटाया तो वो गलबा ख़त्म हो गया? नहीं, ये ज़िंदगी है, इसे डिज़ाइन करना पड़ता है। हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कलमा पढ़ा इसी लम्हे से आपने इस्लाम के गलबा के लिए काम शुरू कर दिया, फिर इसके बाद आपने अपनी एक एक सांस को डिज़ाइन ऐसे किया कि आपके ज़रिए से इस्लाम को हमेशा गलबा ही मिलता चला गया। आप हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह उनकी सीरत पढ़कर देखिए, आपको इनकी ज़िंदगी में पैवन

0: लगा हुआ लिबास मिलेगा, भूख के सबब पेट पर पत्थर बंधे हुए मिल जाएंगे, गैर मुस्लिमों और मुनाफिकों की तरफ से इल्ज़ाम तराशियाँ आपको मिल जाएंगी, दुख दर्द तकलीफ़ें परेशानियाँ माशी ऊंच नीच सब कुछ मिलेगा, लेकिन इस्लाम की इज़्ज़त गलबा और शान और शौकत में कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी आपकी ज़िंदगी में एक मिशन था और आप अपने इस मिशन के लिए हर वक्त सरगम अमल और आप अपने इस मिशन के लिए हर वक्त सरगर्म अमल थे। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, सीरत फारूक आज़म से हमें यह सबक मिलता है, बेमकसद ना हो जाएं, बास यानी बेकार ज़िंदगी ना गुजारें, सिर्फ़ पैसे के पीछे भागते रहना इसका कोई माना नहीं होता। आपको तारीख़ में लाखों नहीं करोड़ों मिल जाएंगे जिन्होंने खूब कमाया खाया जमा किया और छोड़ कर चले गए, नतीजा कुछ भी नहीं निकला, आज उनकी कब्रों के निशान तक मिट चुके हैं। यूं ही बस हंसना बन सवरना स्टाइल हेयर स्टाइल लगाना फिशल वगैरह के लिए जाना करवाना महंगे सूट पहनना महंगे मोबाइल ख़रीदना महंगी गाड़ियों में घूम लेना इन सब का कोई माना नहीं। आप ज़िंदगी अच्छी गुजारें ज़रूर गुजारें मगर इसे एक माना दें, एक मिशन अपनाएं। क्या मिशन अपनाएंगे? दीन की सरबुलंदी और सरफराजी, ये सबसे बेहतरीन और आला तरीन मिशन है। आप डॉक्टर बन जाएंगे मगर डॉक्टर बनकर दीन की खिदमत करें, टीचर बन जाएं मगर दीन की खिदमत कीजिए, आला अहदेदार बन जाइए मगर दीन की खिदमत कीजिए। आप मज़दूर बन सकते हैं तो मज़दूर बने, ऑफ़िसर बन सकते हैं तो ऑफ़िसर बन जाएं, जो बनना चाहें बन जाएं, मगर अपनी ज़िंदगी का मकसद दीन की खिदमत को बना लीजिए। जहाँ रहेंगे जिस हाल में रहेंगे ये एक काम करते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़िंदगी बास नहीं गुजरेगी, यानी बेकार नहीं गुजरेगी, बल्कि इसका एक मकसद होगा। दीन की खिदमत करेंगे, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे तो मकसद मिलेगा, मिशन मिलेगा। मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, करी इख़लास ऐसा अता या इलाही, यानी मैं जो काम भी करूं अल्लाह उसके रसूल की रिज़ा के लिए करूं। एक मिशन ले लें अपनी ज़िंदगी का, बेमकसद बेमाना बेकार ज़िंदगी ना गुजारें। यही फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
1: अभी आप समात फरमा रहे थे मुबल्लिगे दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपके दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। मौज़ सामईन, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है। इस माह मुबारक की तज़ीम की वजह से इसे मुहर्रम का नाम दिया गया है। अल्लाह पाक ने इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने से फरमाया और हमें इसमें अजर व सवाब और खैर व बरकत के कसीर मवाक़े अता फरमाए।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हमने आज जो भी अहादीस समात फरमाई, हमें उन पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: समय थयो छे बपोरना पौणा बे।
2: मौजीला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

上次朋友给你的客家风情话，就到诶同大家告别嘞，多谢大家的收听，下次节目还等再会。

ला लीजिए, समय ठीक ढाई बज चुके हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम 819 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। 22 तारीख जून महीना 2026 का साल सोमवार का दिन, और बेशक मैं हूँ रत्ना, आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी हूँ अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक इस बेहतरीन से पसंदीदा कार्यक्रम में, जहाँ पर आप ही के पसंदीदा गीतों को हम चलाते हैं और इस सफर को बनाते हैं और भी लाजवाब। तो चलिए, देर किस बात की है, फोन उठाइए और नंबर घुमाइए 4028085, या फिर अगर काम पर है, ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल ड्राइव करने के समय हम कहेंगे मोबाइल हाथ में ना रखें, पर जरूर अगर काम पर है तो 5251705 से हमारे इस कार्यक्रम में आप मैसेज भेज सकते हैं किसी पसंदीदा गाने की, अगर आपको फरमाइश करनी है अपनों के नाम, तो हम करेंगे आपका स्वागत। और कोशिश यही जारी रहेगी कि आपके पसंदीदा गीतों को हम चला सकें आज के इस कार्यक्रम में। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए, एक करवट ली है मौसम ने और एक करवट हम लेंगे इस प्यारे से गीत के साथ। फिल्म है तोहफा और आवाज़ें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और बेबी कविता की, और इसी के साथ 80s के ज़माने के इस गीत के साथ आइए लाजवाब मौसम को गले लगाते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: इस अलबेले मौसम में बस मौसम तो यही कहता है कि गर्मा गर्म चाय लो, पकौड़े बनाओ और रजाई के अंदर घुस के एक अच्छी सी फिल्म देखो, पर हम तो काम पर हैं, ऐसा तो कर नहीं सकते। पर चलिए, आपके लिए गाने चलाकर भी हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है और यहाँ पर कुछ ऐसे लाजवाब से गाने आप ढूंढ कर लाते हैं और बस हमारे दिमाग की बलती बत्ती गुल हो जाती है। पर कुछ भी कह लो, बहुत ही चैलेंजिंग काम, और इस चैलेंजिंग काम में आप लोगों का साथ हमें हमेशा बहुत ही प्यार से मिलता रहता है, यही हमारे लिए बहुत बहुत प्यारी बात है। और चलिए, अगला गीत जो है हम चलाना चाहेंगे, और ये जो गाना है प्यारी सी विश्वानी जी जो हमेशा हमारा साथ देती हैं, विश्वानी दुमन वक्वा से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी प्यारी बहनें हैं इंदिरा और शारदा, आपकी सखियाँ नीला और प्रतिभा, साथ है शोभा और गीता गजाधर, उनके लिए आपने गाना चुना है दिल कितना नादान है। बहुत ही लाजवाब सा गाना है कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, और ये गाना जाएगा आपके पूरे परिवार के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर रगीशानू से हमारा साथ दे रही हैं नीला जी, उनकी प्यारी बहन है रानी, उनके दो बेटे मानव और कुनल, दीदी जायो और मामी दया के लिए, और रगीशानू के सभी सीनियर सिटीजन मेम्बर्स के लिए।

चलिए इसी के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हैं और यहाँ पर अनीता जी त्रिगोले से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कहती है ठंड बिल्कुल जोरों से शुरू हो चुकी है और इस ठंडे से मौसम में अपने सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा। और चलिए इसी के साथ अंजू और वेद, उनके बेटी और दामाद, बेटा है सचिन, बहू पूजा, केयांश और सिया उनके नाती पोतों के साथ आप अपने सभी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। उपकार फिल्म का ये अगला गीत आपने मांगा है मन्ना रे साहब की आवाज़ में। चलिए इसी गीत को हम जोड़ेंगे ज्योति जी के लिए। यूनियन पार्क से हमेशा साथ देती हैं प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अविष्टा के साथ।

0: की पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम के जारी रखते हैं और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गायत्री जी, जो सैंपिया से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं और अगले गीत की फरमाइश कर रही हैं। वैसे गायत्री जी, आप फिल्म का नाम शायद भूल गई थी, ये फिल्म है चोरी चोरी। जी हाँ, चोरी चोरी, जिसमें नरगिस और राज कपूर साहब नज़र आए थे। और ये फिल्म है बहुत ही पुरानी सी, 19 हम कह सकते हैं कि 50s के ज़माने की फिल्म है। लता मंगेशकर के आवाज़ में रखा हुआ ये गाना आपने मांगा है और आपकी प्यारी बहन अमृता इस वक्त हमारे साथ हैं। उनकी 3 प्यारी बेटियाँ नेहा, क्षिति और दिव्या। आपकी प्यारी भाभी हैं मीरा, साथ है गिरिशा और मेधा, साथ है अमृता जी के 2 प्यारे बेटे सुधीर और कमलेश, और बहू सुधा के साथ आप इस शो को बहुत एंजॉय कर रही हैं। तो इस वक्त 2:52 हो चुके हैं, आपको याद दिला दे, 3 बजे हम जुड़ेंगे समाचारों के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करते हैं आपकी पसंद का कार्यक्रम।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते चलेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शीला जी, जिन्होंने तीसरी गली फिल्म का गाना मांगा है, बहुत ही अनसुना सा गीत पर बहुत ही प्यारा सा गीत। और चलिए इसी गीत को लेते हुए चलते हैं, और यही गाना हमें जोड़ेगा सपहर के 3 बजे के समाचारों के साथ। 3 बजे के बाद इस सफ़र को हम ज़रूर जारी रखेंगे 4 बजे तक, तो साथ ज़रूर देते रहिएगा हमारा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, सुपहर के ठीक 3 बजे हैं। ये जुड़ते हैं 3 बजे के समाचारों के साथ।

0: के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राज्यसभा में मींस टेस्टिंग व्यवस्था को फिलहाल रोकने की घोषणा की। इस व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट पेंशन की राशि सभी को एक समान देने के बजाय व्यक्ति की मासिक आय के अनुसार तय की जानी थी। राज्यसभा की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सरकार के मंत्रियों के साथ एक बैठक लगाई। बैठक के बाद सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने कहा कि पेंशन सुधार को लेकर लोगों की राय और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है। शिक्षा सेक्टर के लिए इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शिक्षा के और उच्च शिक्षा मंत्रालयों के लिए 2.6 बिलियन रुपए का प्रावधान किया है। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी शिक्षा, शुरुआती स्तर पर सहायता और सीखने में कठिनाई या विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए बेहतर सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। इन कदमों का एनजीओ मुनादा चैरिटी ने स्वागत किया। संगठन का कहना है कि ये कदम मॉरिशस की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई संबंधी कठिनाइयों की समय रहते पहचान नहीं हो पाती। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और लिबर पार्टी के नेता केयर स्टॉर्मर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर दिए गए एक भावुक बयान में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ये सवाल पूछ रही थी कि क्या वे अगले आम चुनावों तक नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं, और उन्होंने इस सवाल का जवाब स्वीकार कर लिया है। स्टॉर्मर ने कहा कि वे लिबर पार्टी के नए नेता के चयन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। पार्टी चाहती है कि नया नेता संसद के सेप्टेम्बर सत्र से पहले चुन लिया जाए। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में लेबानन संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रूट मैप पर सहमति जताई। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची के अनुसार हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते में लेबानन में सभी मोर्चों पर लड़ाई समाप्त करने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने तथा इलाकाई तनाव कम करने के कदम शामिल हैं। इसके तहत अमेरिका, ईरान और लेबानन के बीच एक विशेष समन्वय तंत्र भी स्थापित किया जाएगा। हालांकि समझौते के बावजूद दक्षिणी लेबानन में हिजबुल्ला और इजराइल ताकतों के बीच झड़पें अभी भी जारी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

आपका स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और माइक पर इस वक्त आपका साथ दे रही हैं रत्ना। जी हाँ, रेडियो मॉरिशस का ये सफ़र है मीडियम वाट सोनस किलोहर्ट्स पर से, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल 3:04 होने जा रहे हैं। आपको याद दिला दें, सोमवार का दिन है, 4 बजे तक ये सफ़र जारी रखा जाएगा, जहाँ पर आपके लाजवाब पसंदीदा गीतों को हम चलाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलिए आज के इस अगली गीत को लेते हैं, और ये जो अगला गाना है बहुत ही प्यारा सा गीत, और दूर गगन की छाओं में फिल्म से लिया हुआ गीत, गीता जी की पसंद पर हम चलाना चाहेंगे। गीता जी इस वक्त हमारे साथ पोंफिया से जुड़ी हुई है, बेटा है उनके प्यारे पति रोहित, साथ है उनके नाती आदित्य आरव और तनिष, साथ है उनकी नातिन जानवी, 3 बेटे 3 बहुएं और उनकी प्यारी बहन मीला जी, जो न्यू ग्रोव से हमारा साथ दे रही हैं। किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये गीत। इसी गीत के साथ हम जरूर नाम जोड़ना चाहेंगे उमा जी का, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं क्योपिप से।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद कार्यक्रम जो है आपकी का पसंदीदा कार्यक्रम। यहाँ पर जन्मदिन मना रही हैं दुनिशा रामिसा। दुनिशा आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज आप 23 वर्ष की हो चुकी है। आप पाल्मा फ्लैट की रहने वाली हैं। आपके पापा विष्णु, मामा है प्रिया, दादी की ओर से दो फूफू, दो फूफा, सभी कजन्स की ओर से और खासकर नानी की ओर से और सभी रामिसा परिवार जो है पाल्मा से आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए हमारी ओर से भी आपके लिए ये प्यारा सा गाना।

0: जीने का सहारा।
1: चलिए ले चलते हैं आपको पुराने जमाने की ओर। फूंजू साग से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं रूपा जी और इस अगले गीत की फरमाइश वे कर रही हैं और ये है एक फूल चार कांटे फिल्म से दिया हुआ लता जी की प्यारी सी आवाज में उनके सभी दोस्तों के नाम सभी परिवारों के।

0: आपकी पसंद।
1: भाई जब ईश्वर से नाता जोड़ लें फिर दुनिया वालों का क्या काम, पर यहाँ तो काम बनेगा आपसे ही, क्योंकि ये है आपकी पसंद का कार्यक्रम और कार्यक्रम चलेगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ। तो चलिए यहाँ पर 3:18 हो चुके हैं और अगला जो लाजवाब गीत है कैदी नंबर 911, इस फिल्म से लिया हुआ गीत वाकवा से नंदलाल जी की पसंद पर हम चलाने जा रहे हैं और ये गाना उन्होंने मांगा है खास शनाया के लिए और मॉरिशस के सभी बच्चों के लिए। बहुत ही लाजवाब सा ये गीत आपके नाम करते चले।
2: और गाओ ना दीदी।

फिल्म है प्यार की प्यास और ये गाना है तलत महमूद और लता जी की प्यारी सी आवाज में। श्यामा जी रघुनंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं खोंगुब से, उनकी पसंद पर ये गाना चला रहे हैं। विश्वानी जी, वीना रामफल, उनकी दो प्यारी सखियां, भाई हैं जयप्रकाश, भाभी हैं नम्रता, केशव और युदेश, और सभी सुनने वालों के नाम।

मेरा नाम जोकर और ये फिल्म में राज कपूर साहब नजर आए थे। मल्टी स्टार और मूवी रही और ये गीत मांगा है विद्या जी ने, जो है यूनियन पार्क से। उनकी प्यारी चाची कुमारी, बहन है सती, साथ है सुरेखा और बबीता। मेरा नाम जोकर, मुकेश साहब की आवाज़ में।

बिल्कुल आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम और इसे भूलना नामुमकिन। तो चलिए इसी के साथ अगला गीत है फिल्म नई रोशनी से लिया हुआ माधुरी जी की पसंद पर। आवाज है मोहम्मद रफी साहब की।

कार्यक्रम और इसे भूलना नामुमकिन। तो चलिए इसी के साथ अगला गीत है फिल्म नई रोशनी से लिया हुआ माधुरी जी की पसंद पर। आवाज है मोहम्मद रफी साहब की।

लो चल पड़ा ये अगला गीत एक दूजे के लिए, जैसे हमारा और आपका रिश्ता। और बिल्कुल इसी के साथ ये गाना जाएगा रेहानी जी के पसंद पर, जो फिनिक्स से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में रखा हुआ ये गाना आपके लिए, और यही गाना हम करेंगे रूमा जी, और साथ है आरती, इंदिरा, भाई है राकेश, धीरज, बेटा नमलेश, बेटी कीर्तिना और सिमला जी हमारे साथ है बेलरोज से। आपने कहा प्लीज किसी भी गाने के साथ हमारा नाम जरूर जोड़ दीजिए, चलिए यही गाना आपके नाम करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ गीता जी भी जुड़ चुकी हैं, गीता बाई जो नोवेल फॉन्स से साथ दे रही हैं, बेटा है शिवाजी, बहू है श्वेता बाई, प्यारी सी सुधा बाई और उनकी

दो प्यारी नातिन बिजबी बाई, दिया बाई और प्यारा सा मल्हार और उनकी खास सखी गायत्री और उनका बेटा अजय एक दूसरे के लिए। चलिए इस वक्त 3:36।

लाजवाब ये कारवां धीरे धीरे करता हुआ आगे बढ़ाते हैं। और चलिए अगले गीत को लेते हैं। और ये जो अगला गाना है बहुत ही प्यारा सा गीत, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रखा हुआ गाना, फिल्म है दो रास्ते। और ये गाने की फरमाइश कर रही हैं शकुंतला जी मोताईलोंग से उनकी प्यारी ननंद गायत्री के लिए और सभी परिवार के नाम। और इसी गीत के साथ हम जहां नाम जोड़ना चाहेंगे सुनीता जी का, जो कोंगुप से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी तीन प्यारी बहनें विमला कुंगुमा से, गुडलैंड से हैं वीना जी, और कोंगुप से है अमृता जी।

नोवेल फॉक्स की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान कुलेंजी और फिल्म चोरी चोरी का ये गाना उन्होंने मांगा है अपने सभी दोस्तों के नाम सभी परिवारों के लिए। ये है मन्ना डे और लता जी की प्यारी सी आवाज़।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम से आप जुड़े हैं और बिल्कुल ये रेडियो मॉरिशस पर चलने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है जो बेहद पसंद आता है लोगों को। और चलिए इसी के साथ तीन बजकर बावन मिनट 4 बजे तक जा रही हैं हम आपके साथ। और यहाँ पर अमरोज़ हमारे साथ नोवेल कुवैत से जुड़ी हुई हैं। सभी लौतन परिवार के नाम 1920 फिल्म का ये गाना भी मांगती है सुलक्षणा पंडित और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। और ये गाना सभी लौटन परिवार और बुताना परिवार जो हैं मेबग से उन सभी के लिए।

0: चलिए इसी के साथ आज का ये आखिरी गीत फिल्म है कल की आवाज़। ये गाना जाएगा पूजा के लिए जो मो ताइलोंग से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और पापा सुभाष के नाम करेंगे यही गाना कुमार शानू, अलका याग्निक और साधना सरगम की आवाज़ में। और इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम बस यहीं समाप्त होगा, पर फिक्र ना करें, आप सभी के नामों को हम ज़रूर शामिल करते हैं। बसंती जी बोबासन से आप भी हमारे साथ जुड़ी रहीं, काट्रोबोन से सरिता जी जुड़ी रहीं और वैदिक खयोल से साधना जी हमारा साथ दे रही थी, जीवन परिवार जो है यूनियन पार्क से, जीवन परिवार मॉडल बे से, लाहौजा से और दुबई से बहुत बहुत प्यार आप सभी को और हमेशा की तरह हमारा साथ देती हैं सुदेवी जी वाकवा से और ललिता कुशल, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, विमला, वर्षानिया, वीर, वंश, वैभव, राम रतन, राम गुलाम और कुवारू परिवार, गुरन सिंह परिवार के साथ बहुत बहुत प्यार आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे आप सभी को।
1: और तुम मेरे साथ हो,
0: चलिए यही गाना आपको ले जाएगा आज के इस कार्यक्रम के अंत तक और आपको याद दिला दे या 4 बजे आप सुन पाएंगे अंजू गर्बरन जी को प्रकाश कार्यक्रम के अंतर्गत। और इसी के साथ हमारी और आपकी भेंट अब होगी बचपन ऐसा कार्यक्रम में ठीक 5:30 बजे। तब तक के लिए बस साथ देते रहिए।

0: On the hour, every hour. Radio Mauritius.
1: हिंदी माथे की बिंदी विश्व भाषा बनी हमारी हिंदी. सुनिए पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, प्रस्तुति श्रीमती अंजू गर्बरन की.

0: देखिए, मेरा अनुभव जो रहा है काफ़ी लंबा रहा है, क्योंकि मैं 2 दशकों से शिक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित हूँ,
1: जी
0: और मेरा यह अनुभव कहता है कि बच्चे जो है, जो मैं बच्चे कहूँगी क्योंकि छात्र उतना मैं प्रयोग नहीं करती,
1: जी
0: इससे हमारा सानिध्य बढ़ता है, तो मैं बच्चे कहूँगी,
1: जी
0: और हमारे जो बच्चे हैं वो जो पिछली पीढ़ी, मैं कह सकती हूँ जो पिछली पीढ़ी की थी वो थोड़ी अलग थी, और जो अभी जो नूतन पीढ़ी है उनकी भी मनोवृत्ति अलग है।
1: क्या
0: पहले
1: अंतर पाती हैं आप?
0: पहले जो छात्र थे वे थोड़े ज़्यादा अनुशासित थे, और जो आप जानती हैं आज तो AI का बोलबाला है,
1: जी
0: तो इस दृष्टि से काफ़ी परिवर्तन आया है, क्योंकि पहले जो बच्चे थे केवल पढ़ाई और अपने दोस्तों, अध्यापकों और अभिभावकों तक ही सीमित रहते थे, जबकि आज की जो पीढ़ी है वह हर प्रकार से अपने आप को एक ऐसे चक्र में पाता है जिससे वह चाहे भी तो अपने आप को अलग नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: इससे मैं यह कहना चाहूँगी कि जब वह चाहे कि वह सोशल मीडिया के साथ ना जुड़े तो उसको पिछड़ा माना जाएगा।
1: बिल्कुल
0: तो हमें इस तरह से यह देखना पड़ता है कि जो नूतन पीढ़ी के जो छात्र है वह पढ़ाई के साथ साथ इन जो जो IT से जुड़े हुए जो हमारे जो टूल्स है, सोशल मीडिया है, जो ChatGPT है, इन सब का प्रयोग करे, लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने पाया है अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं, उनको भी साथ लेकर उनका भी समावेश करके आगे बढ़ें, तभी वह जो छात्र है उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है।
1: आज की युवा पीढ़ी जो है ना, जिनके हाथ में मोबाइल है, वो प्रश्न भी जानते हुए भी वैज्ञानिक प्रमाण पाते हुए उसका उत्तर जानना चाहते हैं। क्योंकि पहली जो जब हम पढ़ते थे तो हमें जो माता पिता ने कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, पर आज का जो युवा है वे ऐसा नहीं मानता है, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारी जानकारियां होती हैं। चलिए हम छात्र की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपने कहा, आप बच्चों का प्रयोग करती हैं छात्र ना कहकर, तो आइए अवीश जगन्नाथ जी, आपका भी आज के प्रकाश कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, और आप की विचारधारा से हम श्रोताओं को ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी, आज का छात्र, आज का बच्चा क्या सोचता है।
2: जी प्रणाम। आज का विषय है नई पीढ़ी नई सोच, जिसका अवलोकन मैं आपके समक्ष करूंगा। नया दौर नई सोच, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उक्त कथन के आलोक में यह स्पष्ट है कि आज का विषय एक ऐसा प्रेरक नारा है जो आधुनिक पीढ़ी के उत्साह, तकनीकी प्रगति और उनके सपनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रतीक है। नई पीढ़ी को जेनजी या जेन अल्फा कहते हैं, क्योंकि वे डिजिटल युग के बच्चे हैं। इनकी दुनिया इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के इर्द गिर्द घूमती है। इन्हें AI का प्रयोग करना जन्मजात आता है। नई पीढ़ी की उपलब्धियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, शिक्षा में नवाचार। पुरानी पीढ़ी के शिक्षक बच्चों को पाठों को रटाने में एरी छोटी का जोर लगा देते थे, क्योंकि घिसी पीटी एकेडमिक विषयों में अव्वल जो आना है। आज के शिक्षक तारे जमीन पर के निकुंभ सर की तरह छात्रों की रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच तथा व्यवसायिक कौशल को विकसित करते हैं। आज की युवा पीढ़ी अपनी पढ़ाई में मेटा AI, गूगल जेमिनाई और ChatGPT को अपनाकर अपना सुनहरा भाग्य खुद लिख रही है। पुरानी पीढ़ी विकलांग और डिसलेक्सिक छात्रों को बोझ मानती थी। सोनिक्स, स्पीचिफाई, बी माई आईज जैसे ऐप्स आज इन छात्रों के जीवन में इंद्रधनुष्य रंग भर रही है। नंबर 2, क्रांतिकारी सोच एवं सामाजिक न्याय के पक्षधर। नई पीढ़ी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विश्वास करती है। वे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के सख्त खिलाफ हैं। पिछले साल 4 सितंबर 2025 को जब नेपाल की सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब

0: व्हाट्सएप तथा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया, तब नेपाली युवा सड़क पर उतर आए और नेताओं के बच्चों की फिजूल खर्ची का विरोध किया। युवा पीढ़ी के अधिकारों का जब हनन होता है तब वे अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से फैला देते हैं। नंबर 3, प्रगतिशील और समावेशी दृष्टिकोण। आधुनिक पीढ़ी भेदभाव से मुक्त समाज की कल्पना करती है। अभी मई 2026 के भारतीय चुनाव में फिल्म सितारे विजय की भारी जीत हुई। तमिलनाडु में पहली बार कोई ईसाई मुख्यमंत्री हिंदुओं के बीच राज्य करेगा। विशेषज्ञों का यह मानना है कि नई पीढ़ी ने धर्म, रंग एवं जाति से परे होकर अपना वोट दिया, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। नंबर 4, व्यवसाय के क्षेत्र में नवाचार। नई पीढ़ी डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंच बना चुकी है। चाहे मॉरिशस हो या अमेरिका, टिकटॉक पर प्रदर्शित सामानों की खरीदारी में वृद्धि हुई है। यहाँ बैठे हर सदस्य को तेमू, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन बाजार के नाम पता है। नंबर 5, रोजगार पैदा करने की क्षमता। पुरानी पीढ़ी के लिए सरकारी नौकरी किसी वरदान से कम नहीं, उल्टा नई पीढ़ी अपनी नई सोच एवं वैज्ञानिक ज्ञान के बलबूते खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच रखती है। एक्वापोनिक एवं हाइड्रोपोनिक जैसे न्यूटन कृषि उत्पादन तकनीक को जूडेक्स तथा सेड्रिक ने मॉरिशस में विकसित किया है। नंबर 6, कार्य संस्कृति में बदलाव। युवा पीढ़ी मनोरंजन व फ्रीलांसिंग जैसे कार्यों को अधिक महत्व देती है। किसने कभी सोचा था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे व्यायाम प्रशिक्षक जोविक्स, हंसाने वाला भुवन बाम, रसोई सिखाने वाली बिस्टी किचन, नांसी त्यागी जैसी बस्ती में रहने वाली लड़की आज पारिस फैशन में लाखों रुपए कमा रही है। हालांकि हमारी नई पीढ़ी कोई दूध की धूली नहीं है, इनके दामन में भी दाग हैं। वे होश से नहीं, जोश से काम लेते हैं। इतिहास गवाह है कि जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं उनमें नौजवानों की बुद्धि भ्रष्ट करके उन्हें मोहरा बनाया जाता है। आधुनिकता के चकाचौंध में कितने युवक जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए ना बीवी ना बच्चा ना बाप बरा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। वे कभी ड्रग तस्करी तो कभी रुपयों का घोटाला कर बैठे हैं। अंततः नई पीढ़ी नई सोच का आशय पुरानी पीढ़ी का अपमान नहीं, बल्कि पुरानी परंपराओं के सकारात्मक पहलुओं के साथ आधुनिक विचारों को मिलाकर आगे बढ़ना है। युवकों को इतना काबिल बनाना है कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है।
1: बहुत खूब आपने बताया कि आज की युवा पीढ़ी की सोच किस प्रकार है और किस प्रकार से परिवर्तन को स्वीकारती है। अभी जैसे हमने सप्ताहांत में म्यूजिक डे मनाया, तो आपने भी मनाया होगा स्कूल में। आपका म्यूजिक डे के लिए क्या विचार रहा और कैसा लगा आपको?
2: म्यूजिक डे हमारी पाठशाला का जो है वह एक अभिन्न अंग बन गया है, क्योंकि संगीत
1: पहले तो ऐसा नहीं था।
2: संगीत दिवस पहले मतलब इतना विस्तार से नहीं मनाया जाता, लेकिन आजकल हर पाठशाला में इसको शिक्षा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है, क्योंकि छात्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनको विकसित करने का यह एक सुनहरा मौका है।
1: बिल्कुल।
2: और छात्र भी यह चाहते हैं कि केवल वो कक्षा की चार दीवारी में ही ना रहें,
1: पाठ्यक्रम से ही ना जुड़े रहें।
2: हाँ, पाठ्यक्रम से ही जुड़े ना रहे, और गान, नृत्य इन सब में जब वे अपनी रुचि दिखाते हैं तो वे कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं, और साथ ही साथ उनको लगता है कि पाठशाला आना मजेदार हो गया, मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी हो गई। तो यह एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हमारी जो नूतन पीढ़ी है इनको आप व्यस्त रखना चाहते हैं, इनमें रुचि पैदा करना चाहते हैं, तो संगीत के साथ साथ भाषा का बहुत अच्छा मेल होता है, तो भाषा के माध्यम से वे अपने संगीत को भी आगे बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे, आपके लिए गाएंगे भी या कविता भी लिख देंगे।
1: संस्कृति

0: से जुड़े रहेंगे,
1: बिल्कुल संस्कृति से भी जुड़े रहेंगे। और आज देखेंगे कि हमारे जो विद्यालय में है वहाँ संगीत दिवस इस तरह से मनाया जाता है कि जो निपुण जो प्रवीण संगीतकार हैं उनको भी बुलाया जाता है। जैसे अभी निखिल जो हैं पूरे हमारे पूरे देश को उनका नाम रोशन करके आए थे भारत से, तो उनको हमने हमारी पाठशाला में हमारे विद्यालय में स्वागत किया और उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर ऐसा सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया
0: कि सभी
1: फूले न समाए।
0: तो ये है प्रभाव आज की युवा पीढ़ी का हमारे छात्रों पर, हमारे अध्यापकों पर, क्योंकि अध्यापक भी तो उन्हीं से प्रेरित होते हैं। जब बच्चा आगे बढ़ता है तो अध्यापक को भी खुशी होती है।
1: जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि बच्चों के साथ साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं। और मैं आपको एक बात कहूँ, जोक्स अपार्ट, जो शिक्षक होता है ना वो हमेशा जवान रहता है, क्योंकि वो जवान लोगों के साथ काम करता है, तो उसकी विचारधारा भी ऐसी ही होती
0: है, नवीन होनी चाहिए। क्योंकि हाँ। तो परिवर्तन जब हम स्वीकार रहे हैं तो परिवर्तन में हमें भी उसका भाग बनना पड़ता है, हमें अपने आप को परिवर्तित करना पड़ता है कि हम भाषा के साथ साथ संस्कृति को जुड़ते हैं और संस्कृति के साथ हमारी परंपराएं अपने आप जुड़ जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। और श्रोताओं, आपके क्या विचार हैं आज की युवा पीढ़ी के लिए? आप भी बैठकर सोचें कि हमने नृत्य दिवस मनाया और हमने संगीत दिवस मनाया, योग दिवस मनाया, ऐसे दिवस हमें प्रेरित रखने के लिए, हमें सोचने के लिए, सोच नहीं चिंतन करने के लिए होते हैं। और इस कार्यक्रम में आज एक युवा ने अपने विचार जो हमारे साथ साझा किए, ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमें परिवर्तन को अच्छे रूप में स्वीकारना चाहिए। बहन जी, आप यहाँ पर आई, अमूल्य समय दिया आपने भी, अविश हमारा बहुत सारे दिशाएं बदल दी आपने अपने विचार से, इसके लिए हम आभारी हैं। और अभी जो आप तक कार्यक्रम पहुंचा रहा है उनको भी धन्यवाद देंगे। अगले कार्यक्रम में एक और छात्र के साथ हम जुड़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, शुभ संध्या।
2: अभी आप सुन रहे थे पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, श्रीमती अंजू गर्बरन की।

0: 819 kilohertz. This is
1: Radio Marches. Radio Marches.
2: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा MBC रेडियो आपके साथ।

रेडियो मॉरिशस की लहरों पर इस समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल 5:30 बज चुके हैं। मैं हूँ रत्ना, आपका प्रोग्राम बचपन ऐसा मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी बस थके हारे इस वक्त घर पर होंगे।

और हो सकता है कुछ लोग बस अभी अभी ट्यूशन ख़त्म करके घर पहुंचे होंगे। हाय हाय, कितना हेडेक वाला दिन होता है मंडे का दिन, और ऐसे में इतनी सारी पढ़ाई, इतनी सारी तैयारी, और जैसे ही घर आए तो बस हाथ मुंह धोकर फिर बैठ जाओ होमवर्क करने। पर हम तो ये कहेंगे भाई लाइफ बहुत अच्छी है, तो चलिए अभी अगर घर पहुंचे हैं तो बस्ता रखिए साइड पर और मज़ेदार कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज लाजवाब बातें भी करेंगे और इसी के साथ आपको बताते ये भी चलेंगे कि लाइफ में कभी आपको रिलैक्स होना है तो क्या करना चाहिए। हम में से ऐसे बहुत सारे होंगे जो घर पर पहुंचते ही बस मोबाइल हाथ में लिया और रील्स देखना शुरू, स्क्रोलिंग करना शुरू, है ना, और ऊपर से मम्मी की डांट कि भाई अभी घर पहुंचे हो, अपना बस्ता तो जगह पर रखो, जूते सही ठिकाने पर रखो, एक जगह जहां टीचर की किटकिट खत्म नहीं हुई वहां मम्मी पापा की किटकिट फिर शुरू। बच्चे करे तो क्या करे, सही कहा ना मैंने। तो चलो आज के इस कार्यक्रम में आपको परेशान नहीं करेंगे, आपसे हम बातें भी करेंगे, और बेशक अगर आप भी अपनी कोई बातें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं बेशक आप हमें कॉल कर सकते हैं 4028085। वैसे आपको पता है सबसे ज्यादा थकावट निकालने का तरीका कौन सा है? अपने पेट से खेलने का। जी हाँ, अपने पालतू, अपने जो घर के जो पालतू, जो डॉगीज होते हैं, बिल्लियां होती है, या फिर आपका पालतू जानवर कौन सा है? कई सारे लोग तो पक्षियां पालते हैं, और सच में क्या मज़ेदार टाइम बीतता है जब हम घर पहुंचते हैं और अपने पालतू जानवरों के साथ हम अपना समय बिताते हैं। सबसे रिलैक्सिंग मोमेंट यही होता है। तो चलिए आज के इस सफर में आप भी हमें बताइए कि आपका पालतू जानवर कौन सा है।

चलिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी है एक हमारी बहुत ही प्यारी सी दोस्त सोनल, और वो कहती है कि बिल्कुल उन्हें भी पेट से बहुत ही प्यार है और उनके यहाँ है एक छोटा सा एम्स्टर जिनके साथ खेलना उन्हें बहुत पसंद है। और बिल्कुल जब हमारे पास एक पेट होता है तो कहीं ना कहीं हम भी ज़िम्मेदार हो जाते हैं, और वैसे हमारे साथ ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने पेट्स के बारे में हमसे बात करना चाह रहे थे। चलिए, कुत्ता बिल्ली तो हर कोई पालता है, पर यहाँ पर बिल्कुल ऐसे भी कई सारे दोस्त हैं जो एम्स्टर पालते हैं, इसी के साथ साथ गिनी पिग, और किसी किसी के यहाँ तो इग्वान भी है। पर सच में कहे ये एक ऐसा तरीका

का है, जहाँ पर आपके टच से यानी आपके छूने मात्र से आप एक बहुत अच्छी गहरी दोस्ती बना सकते हैं ऐसे पालतू जानवरों के साथ। और इतना ही नहीं, उन्हें छूना, उनके साथ खेलना, जैसे अब मान लीजिए आपके आंगन में ही कोई डॉगी है और उनको आपने अगर उनको ट्रेन किया है, कुछ ऐसी आदतें आपने उन्हें सिखाई है, तो एक तरह से आपको एक बहुत ही अजीब सा सुकून महसूस होता है जहाँ पर आप अपने पालतू जानवर के साथ बात कर सकते हैं, उन्हें कमांड दे सकते हैं और वो कमांड के साथ जब वे बातें समझते हैं, आपकी आंखों का इशारा समझते हैं, उससे देखकर आपको ज़्यादा खुशी मिलती है ना। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप घर पर पहुँचे हो और आपका डॉगी आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हो? बिल्कुल, ये जो नज़ारा है देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और सच में जब उन्हें बैठने को कहो या वेट करने को कहो या फिर उन्हें बाहर घूमने ले जाने के लिए इशारा करो, तो उनकी जो हरकतें हैं वो इतनी अच्छी लगती है देखने के लिए। चलिए इसी पर आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना हम लेकर आए हैं। ये है फिल्म मेम दीदी का और लता जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में, और इसमें भी उन्होंने छोटे से पेट का ही जिक्र किया है।

बचपन ऐसा कार्यक्रम और इसी के साथ बिल्कुल यहाँ पर हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं ना कि आज के समय में सभी लोग बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त है जैसे हमारे पालतू जानवर, इससे अच्छी दोस्ती हो ही नहीं सकती। कई सारे हैं जो बिल्कुल एक छोटा सा डॉगी पालते हैं, कुछ हैं जो बिल्ली पालते हैं, कितने तो ऐसे भी हैं जो चिड़िया पालते हैं, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कुछ चिड़ियाएं तो बातें भी करती हैं, जैसे तोता। अगर आपने उसे बचपन से पाला है और आपने उसे बात करने की तरकीबें सिखाई हैं, तो वो बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। कई बार घर के लोगों का नाम भी वे बोलना जानते हैं, और इतना अच्छा लगता है सुनने के लिए। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, मेरे ही एक रिश्तेदार के घर एक ऐसा तोता था जो चाय पीना बहुत पसंद करता था। भाई उनको ऐसा देखना और उनके साथ समय बिताना, मैं कहती हूं आपको, आपको मोबाइल में देखने का समय ही नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, कर कई सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो मुर्गियां पालते हैं। कितनों के घर आज भी गाय पालने का है जैसे रवैया है, और सच में

देखा जाए तो जानवरों को पालना कोई यूं ही नहीं होता। उनके साथ समय बिताना, उनके लिए खाना, उनका खाना तैयार करना, उनके साथ बस उन्हें सहलाना, उन्हें निलाना एक अलग किस्म का स्ट्रेस बूस्टर।

या आपके अंदर प्यार, सहानुभूति, जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाता है। और इतना ही नहीं, बच्चों के साथ, कहते हैं ना कि कई बार पालतू जानवर जब उनके साथ खेलते हैं, बॉल के साथ खेलते हैं, और बस वो एक इंटरैक्शन है जो बच्चों और जानवरों में डेवलप होता है, ये दोस्ती लाजवाब होती है। उन्हें छूना, उनकी गर्दन को सहलाना, साथ ही साथ उनको घुमाने ले जाना और उनकी हरकतों के साथ खेलना। आप जब बातें करते हैं या आप जब भी मायूस होते हैं, आप नोट करिएगा, आपके जो जानवर है वो आपके साथ, जब आप उनको छू कर उनके साथ बातें करते हैं, तो वे आपके स्पर्श को महसूस करते हैं, एक अलग सा लगाव। भाई दोस्ती हो तो ऐसी है ना।

तो दोस्तों इसी के साथ जाने का समय हो चला है, पर बेशक अगर आपके पास कुछ समय मिले तो अपने पेट्स के साथ दोस्ती करें, पेट्स के साथ समय बिताएं, इससे अच्छा समय हो नहीं सकता। चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले सोमवार को एक नए कार्यक्रम के साथ, बचपन ऐसा कार्यक्रम। अपना ख्याल रखिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत हसीन है।

नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने राज्यसभा में पेंशन के लिए प्रस्तावित मींस टेस्टिंग को फिलहाल फ्रीज करने की घोषणा की। संसदीय सत्र से पहले मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने बताया कि सरकार ने पेंशन सुधारों पर जनता की राय को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। पेंशन सुधारों पर मींस टेस्ट को निलंबित करने के बाद समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने श्रमिक संघों के साथ बैठक लगाई। इसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ बैठक के बाद मंत्री अशोक सुभो ने कहा कि इस मामले में विवेक की जीत हुई है। विपक्ष नेता जोलेश रोंगा ने राज्यसभा में पेंशन सुधार को

देश के इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात बताया। हालांकि उन्होंने 2026-2027 के बजट में मैटरनिटी लीव की समीक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर जुर्माना बढ़ाने जैसे कुछ कदमों का स्वागत किया। आज से राज्यसभा में बजट 2026-2027 पर बहसें शुरू। कृषि सेक्टर में श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए 1000 से अधिक विदेशी कामगारों के आवेदन प्राप्त हुए। मॉरिशस इंडस्ट्री अथॉरिटी नियामक संशोधनों की प्रतीक्षा कर रही है जिससे विदेशी श्रमिकों की भर्ती आसान होगी। विदेश स्तर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर ने अपनी लेबर पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बाद एक टेलीविजन संबोधन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

0: नमस्कार। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने राज्यसभा में मींस टेस्टिंग को फ्रीज करने की घोषणा की। इसका अर्थ है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु लाभार्थियों के संसाधनों और आय की जांच फिलहाल नहीं की जाएगी। आज सुबह संसदीय सत्र से पहले डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सरकार के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता संभाली। इस बैठक के बाद समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पेंशन सुधार से संबंधित जनमत को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है।
1: I've listened to the views and heard the views of the population to the proposed measures regarding pension reform. The population has clearly already realized the unsustainability of the basic retirement pension, as we have known it. The measures taken last year have already positively impacted the economy, and we have already seen how it has helped public finances. I have this morning met a number of my ministers with the technicians on pension reform and those of the Ministry of Finance to discuss the matter further. I have taken on board the suggestions made. Anxious of the concerns of the people, whilst we will have, it will have consequences both on the budget deficit and on the public sector debt, we have decided to freeze the means testing proposed. Thank you.
0: अशोक सुभो ने पेंशन के लिए पात्रता हेतु मींस टेस्टिंग को फ्रीज करने के प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत किया। समाज सुरक्षा मंत्री के अनुसार डॉक्टर नवीन राम गुलाम को गलत सलाह दी गई थी। मंत्री सुभो के अनुसार पेंशन संबंधी कोई भी सुधार अलग से परामर्श का विषय होना चाहिए, न कि इसे बजट में शामिल किया जाना चाहिए। समाज सुरक्षा मंत्री और उनके जूनियर मंत्री कुगन पहापे ने 2026-2027 के बजट में प्रस्तावित पेंशन सुधारों पर चर्चा करने के लिए आज श्रमिक संघों के साथ बैठक के बाद प्रेस से मुलाकात की। स्टेट एज पेंशन में सुधार को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। यह ऐलान प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में किया, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। लेकिन यह फैसला यूनियनों को पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर पाया है। वे इस रोक के दायरे पर स्पष्टीकरण मांग कर रही हैं और सुधार लाने वाली विशेषज्ञ समिति से ये बताने का आग्रह कर रही हैं कि आय मापदंड पेश करने के पीछे क्या तर्क था। तो आज राज्यसभा में बजट पर बहसें शुरू हो गई। पहले वक्ता विपक्ष नेता थे, जिनका भाषण मुख्य रूप से ओल्ड एज पेंशन प्रणाली में सुधार पर केंद्रित रहा। जुलेश गांव ने इस सुधार को विश्वासघात करार दिया है।
2: विपक्ष के नेता ने बजट 2026-2027 में प्रस्तावित नई पेंशन व्यवस्था सुधार की आलोचना की है। जोली जोगा के अनुसार इस सुधार ने आम जनता के बीच भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है।
3: एक्सप्लिकेशन सुर ला पेंशन ने क्लेयर पुर पर्सन मे ऑन डोआ ले रिकोनेट सफ पुर ला कमिशन डेस एक्सपर्ट डेस ग्रांड्स एक्सपर्ट की विएन डू प्रिवे qui ont proposé un nouveau mécanisme. Quels revenus sont réellement visés par cette contre-réforme? Le salaire est pris en compte, les revenus professionnels sont pris en compte, les revenus d'affaires sont pris en compte, les revenus locatifs sont pris en compte,

0: pension contributive sont prises en compte. Environ 80 000 citoyens, qui comprennent des employés du secteur public et privé, touchent une pension privée. Mais par contre, les dividendes, eux, ne sont pas pris en compte. Et c'est là que l'injustice devient flagrante, Madame la Présidente. La pension n'est pas une faveur. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas une dépense à réduire froidement dans un tableau Excel. Madame la Présidente, ce que le gouvernement fait, je le redis, est une escroquerie politique.
1: हालांकि जोली जोगो ने यह भी स्वीकार किया कि बजट 2026-2027 में शामिल कुछ उपायों का भी स्वागत करती हैं।
0: La révision du maternity leave, le menstrual leave, la dotation de 10 millions de roupies pour lutter contre le problème de bullying dans les établissements scolaires, l'allocation de 133 millions de roupies pour l'acquisition des manuels scolaires et de matériel pédagogique et la mise sur pied d'une foundation practical programs pour les enfants qui sont en grade 7 et grade 9. Parce que, on le sait, une bonne partie de ces enfants ne réussissent pas la SI et se retrouvent sans formation et sans emploi. Le lundi férié, au cas où un jour de congé public est un dimanche. Toutefois, il faudra éclaircir si la fête de la Pâque, qui est toujours fêtée un dimanche, est considérée comme un congé public. Et le lundi des Pâques, à ce moment-là, ce que je comprends, sera férié. La hausse de l'amende pour la pollution sonore de 10 000 à 20 000 roupies, ça aussi.
1: जोली जोंगा ने अपने संबोधन में शागुस मुद्दे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उपयोग, उपभोक्ता संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन, जल प्रबंधन, पुलिस बल को मजबूत बनाने और नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी अपने विचार रखे।
2: गजाउ टीम ने बजट को साहसी और जिम्मेदार बताया है और तर्क दिया कि पेंशन सुधार एक आवश्यकता है। विपक्ष नेता को जवाब देते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि यह बजट भविष्य की ओर देखने वाला बजट है। सांसद माघी रुखसाना खुलेत चाहती हैं कि रोड्रिक्स को बजटीय कदमों का समान लाभ मिले। आद्रियन जुवाल ने सरकार से पेंशन सुधार को रद्द करने और पुरानी प्रणाली पर लौटने की मांग की। उन्होंने अपने संबोधन में खर्चों और बर्बादी को कम करने की आवश्यकता तथा कानूनी व्यवस्था के मुद्दे पर जोर दिया। सांसद रोशन जमन और बालकृष्ण बाबा जी ने बजट के नवाचारी कदमों पर चर्चा की, जिनमें जनता को विकास के केंद्र में रखा गया है। कृषि सेक्टर में स्थानीय श्रम शक्ति की कमी का सामना कर रहे साझेदारों द्वारा पहले ही विदेशी सहायता के लिए 1,000 से अधिक आवेदन दिए जा चुके हैं। मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी विदेशी श्रमिकों के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए ढांचे में आसान संशोधन की प्रतीक्षा कर रही है। रजनी बीकर।
3: यहाँ लामारी में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मार्केटिंग एसोसिएशन के अंतर्गत संगठित 80 खेतिहरों ने मदद की मांग की है। उन्हें इस सीजन के लिए कम से कम 100 विदेशी कामगारों की जरूरत है। कामगारों की कमी के चलते कुछ लोगों ने अपनी जमीनें त्याग दी है। MCIA के जरिए 100 कामगारों की मांग की गई ताकि संगठन में लगा सके। देख रहे हैं कि उत्पादकता कम होने लगी है। खेतिहर 3-4 बीघा जमीन संभालते थे पहले, अब 1-1 बीघा ही संभाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं। कामगारों के अभाव के चलते उत्पादकता घट रही है, फसल में भी देरी हो सकती है। ईख के गन्ने के सेक्टर में भी कर्मचारियों की कमी महसूस की जाती है। अगले सप्ताह कटनी शुरू होने वाली है। मॉरिशस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल फेडरेशन लिमिटेड में संगठित 108 कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने MCIA को अपनी ज़रूरतों के बारे में बताया। मॉरिशस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल फेडरेशन लिमिटेड के सी

0: कोच सचिन सुखना ने कहा, हर कोऑपरेटिव मांग करेंगे कि उन्हें कितने कामगारों की जरूरत है। क्षेत्रफल और टन के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। जिन कोऑपरेटिव्स के 200 खेतीहर हैं, तो तय किया जाएगा कि एक खेत के बाद दूसरे खेत में काम कर सकें। खेतों को भी संगठित कर रहे हैं ताकि लॉजिस्टिक्स और श्रमिक खर्च भी कम हो। मॉरिशस के इंडस्ट्री अथॉरिटी में बातचीत में काफी प्रगति हो रही है। कानूनी ढांचे पर गौर किया जा रहा है और बहुत जल्द ये साकार होने वाली है। अप्रैल महीने से विदेशी कामगारों की मांगें करीब 1000 की बताई जाती है। MCIA के CEO डॉक्टर सुमन सिरतन ने कहा, बहुत जल्द नए रेगुलेशंस के साथ आ रही है। एक कानूनी ढांचा होगा संचालन के ढंग पर, जिसके अंतर्गत एक सिस्टम जहां कामगार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ होगा या फिर कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ। कामगार अलग अलग खेतों में काम करने जा सकेंगे। मुख्य रूप से भारत से कामगार ला रहे हैं, उनकी अलग संस्कृति है। गन्ना ही मॉरिशस की तरह नहीं उगाए जाते हैं। पहले सप्ताह में उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले तो भारत से 300 कर्मचारी मॉरिशस आएंगे। उनका आगमन एक अधिक विस्तृत नीति के अंतर्गत है, जिसका मकसद है 2000 से अधिक विदेशी कामगारों को बुलाना, खासकर कृषि उत्पादन एवं गन्ने के क्षेत्र में समर्थन के लिए।
1: BCP बैंक की मॉरिशस शाखा ने देश में अपने विकास के एक नए चरण में कदम रखा है, जहां गुरुवार को टेलफिया मुकामी इसके नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें मोरक्को से आए ग्रुप के अधिकारी और बैंक ऑफ मॉरिशस की गवर्नर उपस्थित रही। ये परियोजना मॉरिशस की मंडी में संस्थान की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है।
2: बीसीपी बैंक मॉरिशस का नया मुख्यालय अब टेलफिया मुकामी स्थापित हो गया है। साल 2018 के अंत से मॉरिशस में संचालित और मोरक्को के बैंकिंग समूह के बैंक सेंट्रल पॉपुलर की सहायक संस्था बीसीपी बैंक के लिए ये नया परिसर मॉरिशस के बैंकिंग क्षेत्र के प्रति समूह की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये मॉरिशस और बैंक की यहाँ की शाखा के प्रति ग्रुप की प्रतिबद्धता दर्शाता है तथा महाद्वीप में अपनी सेवा देने के लिए भी अच्छी स्थिति पर है। इसके अलावा बैंक एशिया और अफ्रीका के बीच एक पुल का काम करेगा। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए मोरक्को से ग्रुप का एक प्रतिनिधिमंडल तथा बैंक और मॉरिशस की गवर्नर भी मौजूद थी। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के लिए मॉरिशस एक अत्यंत ही आकर्षक वित्तीय केंद्र के रूप में सामने आता है, पर सुधार की हमेशा संभावना रहती है। पर अपने महत्वपूर्ण भौगोलिक जगह पर स्थित होने और अपनी स्थिरता के चलते मॉरिशस निवेश के लिए बहुत उपयुक्त है। ये बैंक के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
1: और फुटबॉल विश्व कप में स्पेन को बराबरी पर रोकने के बाद विश्व कप में पदार्पण कर रही केप वर्डी की टीम ने आज तड़के एक शानदार मुकाबले में उरुग्वे को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। हाफ टाइम तक पिछड़ने के बावजूद ब्लू शार्क्स ने वापसी करने का जज्बा दिखाया और लगातार अपना दूसरा ड्रॉ खेला, जिससे ग्रुप एच का समीकरण बेहद रोमांचक और अनिश्चित हो गया। विश्व कप 2026 के कार्यक्रम में 4 मुकाबले हैं, जिनमें पसंदीदा टीमें तो मैदान में हैं, लेकिन वे पहले से ही दबाव में हैं और साथ ही ऐसे आउटसाइडर भी हैं जो क्वालिफिकेशन की दौर में अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है। अरविंद बिसेसर।
3: डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का दूसरा मैच ऑस्ट्रिया के खिलाफ होगा। मकसद है अपनी शानदार शुरुआत की रफ्तार को बरकरार रखना। इस ग्रुप में लीडर है अर्जेंटीना और फेवरेट भी लालबी सेलेस्टे। तकनीकी तौर पर मजबूत टीम है, अनुभव की कमी नहीं है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम बिना डरे बेझिझक आज खेलने के लिए तैयार है और उम्मीद करेगी कि अर्जेंटीना कुछ गलती करे जिसका फायदा ये लोग उठा सकते हैं। ये मैच 9 बजे खेला जाएगा। लियोनेल मेसी के सामने मौका है विश्व रिकॉर्ड को अकेले अपने नाम करना। फ्रांस का मुकाबला इराक से होगा, ये सुबह 1 बजे। ले ब्लू ने भी शानदार शुरुआत की थी और ग्रुप आई में ये लोग आगे हैं और किलियान एम्बापे, डुए, देम्बेले, बाकोला, चर्की जैसे

0: इसे खतरनाक खिलाड़ी है, पर सावधान रहना होगा इराक से, वो भी अच्छी टीम है, काउंटर अटैक में खतरा है। ग्रुप आई में ही नॉर्वे खेलेगी सेनेगल के खिलाफ, 4 बजे ये मैच होगा सुबह, और इसे आप लोग NBC TV पर देख पाएंगे। दोनों टीम शारीरिक रूप से अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, मैच में रफ्तार होगा। अर्लिंग हालैंड अपने पहले मैच की तरह गोल स्कोर करना चाहेगा। सेनेगल अपने पहले मैच में हार गई थी, अब हारना मना है नहीं तो। और कल सुबह 7 बजे जॉर्डन का मुकाबला अल्जीरिया से होगा, ये ग्रुप डी का मैच है। अल्जीरिया के अनुभव पर विश्वास किया जा सकता है, पर जॉर्डन की टीम में भी सामूहिक खेल देखने को मिलते हैं और इसका फायदा ये लोग उठा पाएंगे।
1: विदेश स्तर पर सर केर स्टॉर्मर ने आज यूके के प्रधानमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की। सरकार के इस अलोकप्रिय मुखिया को महीनों से इस्तीफे की मांग का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन गुरुवार को लेबर पार्टी में उनके प्रतिद्वंद्वी एंडी बरहम के संसद के लिए चुने जाने के बाद उनका पद पर बने रहना असंभव हो गया था। अगले 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी के बीच चीनी अधिकारियों ने पहाड़ी नालों और शहरी जल भराव के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। उधर जर्मनी में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी, जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा आशिता रघु के साथ।
2: मॉरिशस के लिए समुद्र में बड़े ज्वार उठने की चेतावनी जारी है, जो आज सोमवार 22 जून 2026 रात 10 बजे तक लागू है। दूसरी ओर मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाली जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य और ठंड हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात के दौरान और कल सुबह बादल घिराएंगे और हल्की हवा बहेगी, विशेषकर सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर। दिन के दौरान कल बादल घिरे रहेंगे और रहकर वर्षा होगी, विशेषकर ऊंचाइयों पर। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और चंद जगहों पर झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 4 मीटर के ज्वार उठेंगे। ये ज्वार विशेषकर पश्चिम और दक्षिण वाले तटों पर टूटेंगे, अतः मछुआरों और लेजर क्राफ्ट ऑपरेटरों तथा जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में तथा तटों के किनारे न जाएं। धीरे धीरे रात के दौरान ये ज्वार कम होते जाएंगे। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 5:39 पर और कल सुबह सूर्योदय 6:45 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजान, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। अनिरुद्ध जागीसर रोड थ्री बुटीक यूनियन वेल में श्रीमती संता जागीसर की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम भरीलाल, उनकी अर्थी कल उन्हीं के मकान यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। समय है कल दिन के

dead body. Cremation tomorrow at 1:30 p.m. Bosquet Lane l'a croisé chez Belle Grokayumi, छियासी साल के 86 years old के हेमराज कुंजो बिहारी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान घोकायु से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिशलियू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। Avenue Cité Padgo Tamaremé 47 years old के श्री नारायण देव निमाई लोग उन्हें बबाल के नाम से अधिक जानती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 3 बजे उन्हीं के मकान तमाहे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियनुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। स्कूल लेन दागोतियामे 48 years old की 48 साल की रिश्मावती खुदी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नमनियसू लोग उन्हें सजनी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उन्हीं उनके पति के मकान रामेश मोहन प्रसाद के मकान दागुचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोस्तों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। कालीमाई रोड ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट में 75 साल के 75 years old के बासदेव रघुनाथ की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी मानती रघुनाथ के मकान ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। समसुंदा रोड बेलवेडिया में 65 साल की 65 years old की कुसिला अंचरास की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम जीवन लोग उन्हें सीला के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे विशाल अंचरास के मकान बेलवेडिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंदे मास पावे की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: गायत्री जयंती के संदर्भ में वेद माता गायत्री शक्ति पीठ मंगलवार 23 जून को शाम 4 बजे कलश यात्रा और दीप यज्ञ का आयोजन कर रहा है। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस मंगलवार 23 जून को मलिंगा आर्य समाज में शाम के 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

听众朋友，今本日的养生专栏，我们讲的是平常抗疫失出来的健康。太感人都记得平常抗疫

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। आप सभी सुनने वालों को हम कहेंगे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए, सोमवार का दिन है श्रोताओं, आज का दिन जो है समर्पित है भगवान शिव को, और आज का दिन आपके लिए बेहद ही मंगलमय हो, हमारी यही कामना है। श्रोताओं, ईश्वर का स्मरण करने से जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए, इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। श्रोताओं, भजले प्रभु का संदेश यही है, हमें ईश्वर की भक्ति, आत्मचिंतन और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करता है। मानव जीवन अनमोल है और इसका वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि प्रभु के प्रति प्रेम, श्रद्धा और आत्मिक उन्नति भी है।

श्रोताओं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। जीवन में आने वाले सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं, इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रभु का नाम हमें कठिन समय में धैर्य, साहस और आशा प्रदान करता है। तो चलिए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। धन दौलत साथ नहीं जाती, लेकिन प्रभु की भक्ति सदैव साथ रहती है। तो चलिए, इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। हमारे तकनीकी सहायक अंजू को हम धन्यवाद देंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।

मोहतरम सामीन, बात करते हैं शहद यानी हनी के हवाले से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह पानी में शहद मिलाकर पिया करते थे, ये पेट की तमाम बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। अगर रोज़ाना एक कप नीम गर्म पानी में एक बड़ा चमचा खालिस शहद मिलाकर नहार मुँह यानी सुबह उठते ही पिया जाए तो उससे वज़न भी कम होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को अपने मशरूब में ना सिर्फ ये कि शामिल रखा बल्कि ताकीद भी फरमाई। शहद का इस्तेमाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा के तौर पर भी फरमाया है।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, जब कुछ चेहरे स्याह तारीख होंगे और कुछ चेहरे रोशन, तब हमें रोशन चेहरे वालों के साथ उठाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट, जलसा, हंगामा।
2: नमस्ते हमनी के सब श्रोता लोग के, जहाँ हवा जहाँ जैसे तोहरा स्वागत करते हैं जहाँ हमनी के कार्यक्रम में यह भोजपुरी तड़का चला था। तड़का लगाई ला जा भोजपुरी के गीत संगे, और सबसे पहला चला जुम्बा होला गाना सुने जा बिस्वानी दीपा जी के गावली गाना है। और ये गाना सुनते तो लोग हमनी के अपन मिसाज भेजे जा 5251700 पर, या फिर फ़ोन करिए जा हमनी के 4028085 पर।

स्वस्थ जेकर अच्छा बा उनकरा सबसे बड़ा धन प्राप्त बा। चला सुनी जा हमनी साहिल जखार जी के गावल गाना। ये गाना हमनी से मंगले हवन आत्मा राम जी बेले से अपन बहिन सुदेवी ललिता प्रभावती और छोटी जी खातिर इष्णु परिवार खातिर बेले के।

और अब चला सुनी जा हमने चंद्रा देव जी बधन जी के गावाली गाना और ये गीत हमने से मंगले हाँ वन सुरेश जी गांव बेलिया से सुरेश गांव बेलिया से गाना अपन सब संगत आलोक के नाम करत हवन और ये यही उम्मीद करत हवन कि सब कोई के हाल चाल ठीक ठाक रही।

चलो कुनार बाबूलाल के गावल गाना सुनिए जा। वैसे तो बेल बेल के नानी दादी लोग दल पिठा पकावत हलन जा। आजकल तो दल पिठा बनाओ बनल बनावल मिलेला, बकर जो बेल के पकेबो ओकर में ओकर मजा लगवे रहेला, तो सब कोई बोलेला चला हमनी दल पिठा देखी जा कैसे बिलल जाता। और ये गाना हमने बजात है जा सुग्रीम जी के पसंद पर, बिल ते के सुग्रीम जी।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: अभी कुछ तड़का जब लगाओ अब जाए तो हमने डाल अब जा चमेली चमेली यानी कि गाना हमने सुनीता ननकू जी की आवाज़ में सर अब जाए गाना हमने से मंगले हवन अमृता जी पीतों से और ये गाना मंगले हवन सोनिया और परी खातिर और अपन बेटा विशान और बट्टू मीनाक्षी खातिर और पूरा अगन इस परिवार खातिर।

सुमन राम तोहल जी के गावल चल सुनी जा हमने चांदो और पारो गाना और ये गाना हमने सुनील जी खातिर बजावत है जा सुनील जी जन रहे लन मौसल मौसें तौम खे अपन तीन गो लैका खातिर मंगले हवन विधि विषम और विराज खातिर तो चल सुनी जाए गाना।

0: भोजपुरी तड़का
1: में चलो जन्मदिन की शुभकामना दे इलाजा, हैप्पी बर्थडे टू यू बोली इलाजा। हमने सर्वेश के जन्मदिन बा उनकर दादी देवी, उनकर पिताजी प्रवेश और उनकर माता जी करुणा बगल से बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद और बहुत मंगल कामना। और ललिता जी यही गाना मंगले हवन सुदेवी जी खातिर, ज्ञानी जी, छोटी जी प्रभावती जी, आत्माराम जी और सुखलाल मौसी खातिर, विशेष विधि आयुषी, आलिया और आलिना खातिर। चलो सुनी जाए गाना हमने।

0: और अब चला जा हमने शांति जी के फरमाइश पूरी करी जा कोटेज माफ करिए तैहूर से शांति जी मंगला ओनी गाना गिरश रूपचंद जी की गावल दागोचे के उनकर मराठी परिवार खातिर और पता गोचे के उनकर भगिना ओम खातिर
1: खुश

और चला बढ़ते बढ़ते चली जा हमने के गणेशन हरि यानी कि रतन हरि जी के गावल ई गाना संगे। सड़क सुरक्षा के बारे में बोला था वन, सड़क पर सुरक्षा बहुत जरूरी है, हमने अपन सुरक्षा के बात ना भुलाए जा सड़क पर बहुत ही जरूरी हो गल बा, और एकर से हमने के आस पड़ोस लोग के सब कोई के ख्याल रखे सकब जा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: तड़का लगाई ला जा हमने अभी कुछ युधिष्ठिर दुलवा जी के गावल गाना संगे और ये गाना हमने बजवाओ थे जा सुदेवी जी खातिर। सुदेवी जी मंगल हवन बाकवा से ये गाना त्रियोले के दीदी ललिता खातिर, कुशल परिवार खातिर, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालेगा के राम रतन, राम गुलाम, कुआरू परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का में हमने पढ़ी जा अनीता जी के मिसाज अनीता जी मंगले हवन एगो गाना सुना नो यंच के गावल फ्रीकॉम फ्लॉक से अनीता जी गाना मंगले हवन अपन पति राज खातिर बेटा अंतिश अंकुश खातिर बहु मनीषा और अशिमा खातिर पोती हिमेशा और आध्या खातिर पोता अंश खातिर
2: गाने से क्या होगा जब बत्ती से धुआं

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुद ही चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर

अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब घर की आटा गिला

0: भोजपुरी तड़का।
1: चले हमने जन्मदिन के शुभकामना दे इलाजा श्रीमती जी के। श्रीमती जी के आज जन्मदिन है और उनका जन्मदिन के मंगल कामना हमने के पूरा टीम बगैर से उनका शुभकामना देवत हवन जा उनकर लड़का लोग उनकर बेटा पतो उनकर बेटी दामाद उनकर पोता पोती नाती नातिन लोग और उनकर चंद्रमुनि परिवार उनका जन्मदिन के मंगल कामना देवत हवन जा। जन्मदिन अभिनंदन। ललिता गजाधर जी के गावाली गाना सुनी जा।

अभी कुछ जन गाना सुनत है जा ओ गाना हज्ञान महिपत लाल जी के गावल रविन जी गाना मंगले हवन और सुने खोजत हवन ज्ञान महिपत लाल जी के ऊ आवाज जिनके स्वर्ण आवाज से कब्जा बोले

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में चले हमने शोभा जी के फरमाइश पर एक गाना चलावे थे जा कथावन के शोभा जी सुनीता ननकू जी के गावली माता भजन मंगले हवन। ये गाना मंगले हवन पर नाती विनेश खातिर आजकल बीमार हवन, बस प्रार्थना करीला जा कि विनेश जी बड़ी हाली से अच्छा हो जाए हन। और ये गाना पूरा परिवार बगल से विनेश जी के नाम करत हवन शोभा जी, और ये सब जितना कोई बीमार बा उनका सब कोई के नाम। चलो माता से प्रार्थना करी जा सब कोई के सेहत अच्छा हो जाए।

भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का अबरी को जन सुनब जाओ गाना आशीष रामफल जी के गावल है और ये गाना हमने बंतिया के जानवी जी के नाम करते हैं जा।

धर्मदेव रंगू जी के गावल एगो गीत बा और करमुआ सुधारे के जो न सलाह देवत हवन उ सच्चा सलाह देवत हवन। चलो राकेश जी के पसंद के गाना पे चित्रिया के राकेश जी गाना मंगले हवन सुने जा।

धन्ना जी नाव जी जी गावत हवन्ना लुकनी दुल्हा दुल्हन के गाना। और अभी जेकर शादी होल होई उनका जन हमनी सब कोई सब जना मिल के बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत मंगल कामना देवत हैं जा। ये गाना हमनी विवेक जी के पसंद पर बजावत हैं जा उनकर पत्नी राधिका खतीर।

0: भोजपुरी तड़का।
1: चले हमने तड़का लगाते जन्मदिन के शुभकामना दे लाजा एलाना जी के। राधा जी नोबेल फोन से टेलीफोन करलन और बोलन कि उनकर नातिन एलाना के जन्मदिन बा। जन्मदिन के बहुत मंगल कामना राधा जी बगल से तोहरा मिलता है एलाना जी, नानी राधा बगल से और मामा आंटी बगल से, पापा ज्ञान, मौसी शिल्पा और तोहर छवो नानी बगल से, बैंजू परिवार, पियतो परिवार, राकेश भाई, राकेश भाई नितिन बगल से और सब भाई बहन लोग बगल से। तो एलाना जी तोहरा राधा नानी जी बहुत आशीर्वाद देवत हवन, बहुत मंगल कामना देवत हवन। संजय गोविंद जी के गावली गाना तोहर खातिर, जन्मदिन के गाना हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: भोजपुरी तड़का। तो चले अभी कुछ सुनब जा हमने कामियों लो तो बीस सब जितना चले लंचा रास्ता पर सब चालक लोग के सावधानी बरते के बहुत जरूरी रहेला। बस सबको के दिमाग में यही बात रही कि हमें के सावधानी से अपन गाड़ी चलाए के चाहिए तो हमने के रास्ता बहुत ही आसान हो जाए और ये हमने के रास्ता में कोई के चोट ना पहुँची। ये गाना हमने बजावत है जा अनिरुद्ध बैजनाथ जी के गावल। चला सुनी जा हमने के भोजपुरी तड़का में।
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद संगीत के खुशबू सुरेखा संगीत भोजपुरी तड़का।

और चल अब रिकुत हमने सुनी जा सुदेश बोई जूजी के गावल गाना पिती पिती छोकड़ी और शहर के छोकड़ी ये दोनों गाना के संगम ये गाना हमने वीना जी के पसीन पर बजवाई ला जा वाकवा के।

क्रम में जो गाना सुने थे जा ओह आदेश ठाकुर प्रसाद जी के गावल गाना, और ये गाना के संगे संगे हमने के कार्यक्रम समाप्त हो जाए, हमने के मुलाकात भी समाप्त हो जाए 11 बजे। सुनिया जा आज के हमने के कार्यक्रम, आज के हमने के सुनहरे पल कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम सुनिया जा गिनीशा से हमने के आवत हला फिर मुलाकात हुई। तब तक तो हर से आज्ञा चाह, शुभ शाम, शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: Mauritius.
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। आप सभी लोगों का स्वागत है रेडियो मॉरिशस पर आपके सुनहरे पल की इस खूबसूरत से बहुत ही प्यारे से शो में। बिल्कुल दोस्तों, सुनहरे पल एक ऐसा शो जहां पे आपकी खूबसूरत पुराने एवरग्रीन गानों को लेकर गिनिशा आ गई हैं इस एक घंटे की सफर में आपका हम सफर बनने के लिए। तो आप बस तैयार से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए इस खूबसूरत से शो में हमारा साथ देने के लिए। गुनगुनाइएगा जरूर और हर एक गीत को दिल से महसूस कीजिएगा।

हर गीत एक कहानी है, हर सुर एक याद है, ये तो आपको भी पता है। और रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं वो अमर बॉलीवुड गीत जो आज भी दिल को छू जाते हैं। तो चलिए मिलकर यादों की सफर का आनंद लेते हैं। और अगला नगमा हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो अभी भी काम पे हैं। सो आपको हम विश करना चाहेंगे बो कुराज।

मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं रात के 11 बजे के बाद अभी भी रेडियो मॉरिशस से जुड़े हुए हैं, हम तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहेंगे हमारा साथ देने के लिए। और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे मॉरिशियन लिसनर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब जो साथ दे रहे हैं, सात समुंदर पार से दूर होते हुए भी हमेशा आप हम लोगों से जुड़े रहते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको नहीं भूले। तो जितने भी हमारे म्यूज़िक लवर्स हैं, चलिए जी अगला नगमा हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली आपके लिए। तो आप आराम से बैठ जाइए और इस खूबसूरत गाने का आप मजा ले लीजिए।

पुरानी यादें और पुराने गाने रेडियो मॉरिशस पर। जी हाँ दोस्तों, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। ये जो गाने हम लेकर आते हैं ना, इंसान को मजबूर करते हैं कि पुरानी यादों में फिर से दोबारा खो जाए। बिल्कुल जी, और हम तो चाहते हैं कि आप अपनी यादों को याद करते करते गुनगुनाएं, मुस्कुराएं और बस जिंदगी को दोबारा उसी तरीके से फिर से देखने लग जाएं। तो चलिए जी, अगला नगमा स्पेशली आपके लिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन सुनहरे पर।

कैसा लग रहा है आपको ये खूबसूरत ब्यूटीफुल गानों का सिलेक्शंस जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। वैसे कुछ गीत ऐसे होते हैं ना जो काफ़ी समय से शायद आपने सुना नहीं, लेकिन सुनते ही ऐसे ही आपका मन मचलने सा लग जाता है कि क्या बताऊँ, क्योंकि आपकी जो पुरानी यादें हम फिर से ताज़ा कर रहे हैं, बचपन की यादें, चाहे आपके दोस्त के साथ पहला प्यार, फैमिली के साथ बिताए हुए वक्त, बिल्कुल जी वो पुराने दिन फिर से जब इंसान को याद आता है ना तो वाकई दिल को सुकून देता है। तो चलिए और भी सुकून के साथ हम लेकर आए हैं आपको, आपके दिल को राहत दिलाने के लिए ये अगला नगमा खासकर आपके नाम।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुडबाय टू यू। आप हमें इजाजत दीजिए, बड़े प्यार से जाने दीजिए, ताकि दोबारा फिर से वापस हम लौट आए एक और खूबसूरत शो में, जिसका नाम है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस, रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: का पंछी।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: तुझ पे